0: सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
0: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
0: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों

0: से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना

0: People living in rural India, the effectiveness of our Panchayati Raj institutions will shape the trajectory of the nation's development, as it is the bedrock upon which a Viksit Bharat will be built. India and US rework trade deal amid tariff changes as fresh talks begin after Modi-Trump G7 meet, notes the Asian Age. The Statesman reports about a record surge in Vaishno Devi pilgrims as the number crosses the 50 lakh mark well before the year reaches its halfway point. International Maritime Organization announces plan to evacuate vessels stuck in Persian Gulf due to the war in West Asia, writes the Hindu. And finally, The Economic Times writes about Gujarat government focusing on Ranshala to educate children of salt pan workers by converting unusable buses into classrooms equipped with smart TVs and TV connectivity dedicated to educational channels. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and NewsOnEIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित भव्य समारोह में स्वास्थ्य विभाग के 262 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया केंद्र सरकार का आभार। राज्य में SIR के तहत BLO और सुपरवाइजरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। डिजिटल प्रक्रिया और इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की दी गई जानकारी। देवघर की मधुपुर में मंत्री हफीजुल हसन ने 1 करोड़ की लागत से 41 जन कल्याणकारी योजनाओं का किया शिलान्यास। क्षेत्र के समग्र विकास को बताया प्राथमिकता। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में छोटा नागपुर रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टीलर्स को 7 विकेट से हराकर जीता पहला खिताब। कप्तान कुमार कुशाग्र बने प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 262 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दिन के 11 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी भी उपस्थित रहेंगे। इन चयनित अभ्यर्थियों में 151 विशेषज्ञ चिकित्सक, 56 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर शामिल हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया यह सम्मान गुरुजी के कड़े जन संघर्ष, सामाजिक न्याय और अलग राज्य के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का सच्चा राष्ट्रीय आदर है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे झारखंड की जनजातीय अस्मिता के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सभी झारखंड वासियों से इस गौरवशाली क्षण का जश्न मनाने की अपील की है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे गुरुजी के संघर्षों, सिद्धांतों और उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़े।
3: दिशम गुरु हमारे झारखंड के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है जमीनी स्तर पर उतरकर, जिस तरह से महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और झारखंड हमारा अलग राज्य बना, आज उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि गुरु जी को जो सम्मान मिला उसे पूरा झारखंड सेलिब्रेट करे।
2: राज्य की बहुचर्चित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर फिर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता कर सवाल उठाया कि इस पूरे घोटाले का असली मास्टरमाइंड कौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जांच समितियों और एसआईटी का खेल रचकर बड़ी मछलियों और सफेदपोशों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मामले के

0: सफेद पोश चेहरों को जो राज्य में बड़ी ताकत है उसको बचाने का प्रयास कर रही है।
1: झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिला प्रशासन अलर्ट है। रांची में सदर एसडीएम वरुण रंजन की अध्यक्षता में बीएलओ और सुपरवाइजरों को डिजिटल प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे।
2: बीएलओ एंड बीएलओ सुपरवाइजर्स से हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, इनमेशन फेज और उसके आगे के जो फेजेस से संबंधित काम है उनके बारे में बताया, कैसे उन्हें फॉर्म कलेक्ट करना है, कैसे इनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे उनको फॉर्म डिजिटाइज करना है। इंस्ट्रूमेंट्स की बात है वो इनोवेशन फेज में वो पार्ट नहीं आता है, क्योंकि इनोवेशन फेज में हमें बस इनोवेशन फॉर्म ही कलेक्ट करना है।
1: उधर साहेबगंज के विभिन्न प्रखंडों में बीएलओ और सुपरवाइजरों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हो गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@iinewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार xhandle@iinews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने अपने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति देते हुए 1,07,00,000 रुपए की लागत से 41 जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। पथलचपटी स्थित आवासीय कार्यालय से शुरू की गई इन विधायक मद की योजनाओं के तहत विभिन्न प्रखंडों में सड़क, नाली, जल मीनार और कीर्तन मंडली भवनों का निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने क्षेत्र के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। रांची के कोकर खोरहा टोली से 47 दिनों से लापता 22 महीने की मासूम आदिति पांडे का सुराग न मिलने पर कल उसके माता पिता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। पुलिस सुरक्षा कारणों से उन्हें रोककर गोंदा थाना पहुंचाया और सचिवालय में उनका आवेदन मुख्यमंत्री के एसओडी को प्राप्त कराया गया। डीएसपी संजीव कुमार बेस्ट्रा ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है।
5: उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया वो एसडी साहब को रिसीव कराया गया है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे की बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की जाए। अब तक हम लोग को ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया है। टीम भी ऐसे नहीं है कि बैठी हुई है, अपने स्तर से वो परिवार वालों को लग रहा है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, जो भी इनकी डिमांड हो रही है सारी चीज को पूरी की जा रही है।
1: रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य भर में मौसम का मिजाज बदलने के साथ साथ आज राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि पलामू और डालीगंज जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। छोटा नागपुर रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टेलर्स को 7 विकेट से हराकर झारखंड टी20 क्रिकेट लीग का पहला खिताब जीत लिया है। कप्तान कुमार कुशाग्र प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं जेसीए स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि एक गेट खुला होने और धीमी सुरक्षा जांच से दर्शकों का दबाव बढ़ा।
6: एक ही गेट वो आमजनों के एंट्री के लिए खुली हुई थी।

0: आज इसकी वजह से अचानक से भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई और एंट्री में फ्रिस्किंग की स्पीड लो थी, जिसकी वजह से बाहर जो है सो पब्लिक का प्रेशर भी काफी बढ़ गया। थोड़ी देर के लिए भीड़ अनियंत्रित हुई थी, परंतु हम लोगों ने यहां पर आकर स्थिति को संभाल लिया है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है।
1: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेसीए स्टेडियम में झारखंड टी20 लीग के फाइनल में प्रवेश द्वार के बाहर भगदड़ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अंदर चौके छक्के बाहर लात घुसे, स्टेडियम में एंट्री नहीं मिली तो तोड़फोड़, भगदड़, 22 घायल। हिंदुस्तान लिखता है, झारखंड की दोनों सॉल्वर चंचल व पूनम की खंगाली जा रही है कुंडली। प्रभास खबर के अनुसार, अजमेर रांची के बीच जल्द दौड़ेगी अमृत भारत 3.0 ट्रेन। दैनिक जागरण के शब्द है, जेल में महिला के यौन शोषण मामले की न्यायिक जांच, रिपोर्ट कोर्ट को पेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित भव्य समारोह में स्वास्थ्य विभाग के 262 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया केंद्र सरकार का आभार। राज्य में एसआईआर के तहत बीएलओ और सुपरवाइजरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। डिजिटल प्रक्रिया और इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की दी गई जानकारी। देवघर की मधुपुर में मंत्री हाफिजुल हसन ने 1 करोड़ की लागत से 41 जन कल्याणकारी योजनाओं का किया शिलान्यास। क्षेत्र के समग्र विकास को बताया प्राथमिकता। और झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में छोटा नागपुर रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टिलर्स को 7 विकेट से हराकर जीता पहला खिताब। कप्तान कुमार कुशाग्र बने प्लेयर ऑफ द मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

नमस्कार दोस्तों, गीत गुंजन के इस बेहद सुरीले और बेहद खास सफर में आप सभी संगीत प्रेमियों का दिल की गहराइयों से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सैका चटर्जी और आज हम आपको लेकर चलेंगे सुनहरे दौर की एक ऐसी हसीन वादी में जहां हवाओं में भी मोहब्बत का जादू घुला हुआ है। दोस्तों, साल था 1975। रूपहले पर्दे पर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था धर्मात्मा। निर्माता निर्देशक फिरोज खान साहब की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का एक एक गाना आज भी हमारी यादों की डायरी में ताजा है। लेकिन आज गीत गुंजन में हम जिस खास नगमे की बात कर रहे हैं, उसने न सिर्फ इस दौर के नौजवानों के दिलों को धड़काया, बल्कि आज भी जब वो कानों में गूंजता है तो दिल थम सा जाता है। इस जादुई गीत को अपनी मखमली और बेमिसाल आवाज से सजाया था शहनशाह तरन्नुम किशोर कुमार ने। और दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने इस गाने में जो धुन दी वो सीधे रूह में उतर जाती है। और मशहूर शायर इंदिवर साहब ने शब्दों को कुछ इस तरह पिरोया कि तारीफ भी सजदा करने लगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म के इस ब्लॉकबस्टर गीत को।

0: तुमने जवाब नहीं दिया।
1: एक ही नहीं आया
0: रेशमा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिंदगी में इतनी कमी का एहसास कभी नहीं हुआ। हाँ कह दो रेशमा, हाँ कह दो।

दोस्तों, जिंदगी में बहुत सी चीजें हमें किस्मत से मिलती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके लिए इंसान की पूरी जिंदगी तरस जाती है, और वो है सच्चा प्यार। इस जज्बात को समेटे साल 1986 में फिरोज खान साहब की एक और कल्ट क्लासिक फिल्म आई थी, जावाज। इस फिल्म का संगीत जितना दमदार था, उतने ही लाजवाब इसके बोल थे। आज हमारे गीत गुंजन के इस मंच पर हम जिस नगमे को याद कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि मोहब्बत की वो हकीकत है जिसे सुनकर हर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दोस्तों, इस गीत को आवाज़ दिया था मनहर उदास और साधना सरगम ने, तो इसे संगीत में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी, जबकि इस गीत को लिखा था इंदिवर साहब ने।

दोस्तों, आप सभी गीत गुंजन के दीवानों को फिर से एक बार इस सुरीली महफिल में दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त सैकत चटर्जी। दोस्तों, मोहब्बत में जब कोई पूरी तरह डूब जाता है ना, तो अपनी पसंद नापसंद सब कुछ अपने महबूब के नाम कर देता है। आज का हमारा जो गीत है वो इसी बेपनाह और निस्वार्थ मोहब्बत की सबसे खूबसूरत मिसाल है। साल था 1970। रूपाले पर्दे पर निर्देशक असित सेन की एक बेहद भावुक और यादगार फिल्म आई थी जिसका नाम था सफ़र। इस फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर तो थे ही और हमारे बेहद स्टाइलिस्ट और हैंडसम एक्टर फिरोज खान भी मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की कहानी जितनी संजीदा थी, इसका संगीत उतना ही अमर। आज गीत गुंजन में हम जिस गीत की बात कर रहे हैं वो है सच्चे प्यार का सबसे बड़ा इकरारनामा, जिसे लिखा था इंदिवर, धुन बनाई थी कल्याण जी, आनंद जी और आवाज़ दिया था मुकेश।

दोस्तों, जब दिल में मोहब्बत का खुमार चढ़ता है तो नजरें बस एक ही चेहरे पर ठहर जाती है। फिर सामने वाला चाहे लाख पूछे कि आखिर इन आंखों में क्या है, जुबा बस तारीफ के कसीदे ही पड़ती है। कुछ इस तरह की छेड़छाड़ और बेहद रोमांटिक मिजाज को समेटे साल 1980 में एक फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। स्टाइल, एक्शन और बेमिसाल संगीत की वो त्रिवेणी थी निर्माता निर्देशक फिरोज खान साहब के फिल्म कुर्बानी। इस फिल्म का हर एक गाना मिल का पत्थर साबित हुआ, चाहे वो लैला हो या आप जैसा कोई। लेकिन आज गीत गुंजन की इस महफिल में हम जिस खूबसूरत और सदाबहार नगमे को गुनगुनाने जा रहे हैं वो एक बेहद हसीन और रोमांटिक सवाल जवाब है। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को लिखा था फिर से एक बार इंदिवर और धुन बनाई थी, जी हाँ, वही कमाल की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी, और आवाज वो तो मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

0: आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत गुंजन। आज गीत गुंजन के तहत आपने सुना स्टाइलिस्ट सदाबहार अभिनेता फिरोज खान पर फिल्माए गए कुछ सुपरहिट फिल्मों के ब्लॉकबस्टर गीत। आइए दोस्तों, अब चलते हैं जोहार पलामू कार्यक्रम की ओर।
1: जोहार पलामू।

0: दोस्तों जोहार, पलामू कार्यक्रम का प्रस्तुति स्वर है मेरा, यानी कि आप सभी का अपना रेडियो साथी सैक चैटर्जी का, और इसके संयोजन करता है संजीव कुमार लाल। दोस्तों आज जोहार पलामू कार्यक्रम के तहत हम सुनेंगे आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह से की हुई बातचीत के कुछ अंश।
1: आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय रिजर्व बैंक के रांची के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार और धन्यवाद।
1: सर सबसे पहले मैं जो आज बात करूंगा, शुरू करूंगा गलतफहमियों से। सर ऐसा अक्सर देखा गया है इन दिनों, खास करके हमारे पलामू रीजन की बात करूं तो, कि एक और दो के जो सिक्के हैं सर, उसका प्रचलन बहुत कम हो गया है इन दिनों। जो लोग हैं वो लेना नहीं चाहते, कहते हैं कि बंद हो गया, या कुछ लोग सीधे तौर पे नकार देते हैं। सर यहाँ तक मैं निजी पर्सनल बात करूं सर, तो झगड़ा तक हो गया, मैं अड़ गया कि भाई कैसे नहीं लोगे, अब भारत के नागरिक हो, आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसी बातें हुई सर, तो ऐसा अक्सर होते रहता है। तो यही जानकारी सबसे पहले मैं साझा करना चाहूंगा श्रोताओं को, आप बताएं कि एक और दो के सिक्के नहीं लेना या नहीं चलाना, या ये कैसे रुक सकता है सर, इसके बारे में।
2: नहीं, आप ही ने अपने सवाल में ही इसका उत्तर दिया है, तो ये गलतफहमी ही जी। और गलतफहमी कई बार जिसको कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, कुछ किसी ने कुछ कह दिया, फिर बाकी लोगों ने बिना उसको सत्यापित किए हुए उसको मान लिया। क्योंकि सिक्के, देखिए सिक्के जो हैं वो भारत सरकार की ओर से जारी होते हैं, रिजर्व बैंक उनका वितरण बैंकों के जरिए करता है। अब सिक्कों का जो जीवन होता है वो लंबा होता है, वो 40 वर्ष भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा होता है कि काल क्रम में अलग अलग समय पे भारत सरकार ने जो सिक्के जारी किए वो थोड़े उनके डिज़ाइन अलग हो सकती है ना, अलग मूल्य वर्ग हो सकता है। तो कई बार उसमें किसी कारण से जनता में गलतफहमी फैल जाती है। हम लोग जो, आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में अनूठा केंद्रीय बैंक है कि वो बुनियादी काम जो हैं, जैसे महंगाई को नियंत्रित करना, मुद्रा प्रबंधन और बाकी जो काम है बैंकर्स टू बैंक्स और सरकार के लिए बैंकिंग, और जो वित्तीय सुदृढ़ता देश की सुनिश्चित करनी है, इन बुनियादी कामों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में अनूठा है कि विकासात्मक कार्य बहुत करता है। तो इसके दो तीन पहलू हैं विकासात्मक कार्य के। एक तो लोगों को जो सुविधाएं हैं, वित्तीय सुविधाएं हैं, उसके बारे में हम लोग बताते हैं, जिसको कहते हैं कि वित्तीय समावेशन के जरिए हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि बैंकिंग सुविधाएं सबके लिए उपलब्ध रहें। फिर जो सुविधाएं हैं, जो उत्पाद हैं, उनके बारे में लोगों को कई बार जागरूकता नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, तो उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में जाएं और जो बुनियादी जो वित्तीय उत्पाद हैं, सुविधाएं हैं, उसके बारे में बताएं, और लोगों के जो अधिकार हैं उसके बारे में बताएं कि वो जो निर्णय करते हैं वो अपने हित में कर सकें, वित्तीय निर्णय, और साथ ही साथ कुछ जो जरूरी सावधानियां होती हैं तो वो भी बताते हैं, ताकि जो उनके गाढ़ी जो कमाई है वो उनके पास सुरक्षित रहे। उनको ये भी बताते हैं कि अगर बैंकों में आप अपनी राशि रखेंगे, बचत रखेंगे, तो उसके क्या फायदे हैं, वो बचत फिर ब्याज के जरिए बढ़ती भी है और 5 लाख तक की राशि अभी हर खाते में सुरक्षित है DICGC के जरिए, जो हमारी संस्था है। तो इसी क्रम में हम लोग ये भी बताते हैं सिक्कों के बारे में, और हमारा जो वेबसाइट है उस पर भी हम लोग जानकारियां डालते हैं। तो जैसे इसके बारे में 26 जून 2019 का प्रेस रिलीज भी है, जिसमें हम लोगों ने ये सारे जो लोगों के भ्रम हैं, गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश की। साथ ही साथ आप रेडियो पर भी सुनते होंगे, या हम लोग मोबाइल वैन्स के जरिए भी ये जानकारियां प्रसारित करते हैं, जो आपने सुना होगा सिक्का सिक्का
1: जी,
2: चलेगा
1: बिल्कुल, हमारे आकाशवाणी केंद्र से भी सर बजते हैं।
2: और हम लोगों ने इसके अतिरिक्त अपने रांची कार्यालय की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने 90वें वर्ष में रिजर्व बैंक के 90 शिक्षण संस्थानों में इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम किए। फिर हम लोगों ने एक 90 स्लोगन की पुस्तिका निकाली है, यात्रा अविराम, तो उसमें इसके बारे में भी है। जैसे एक स्लोगन उसमें है, सिक्के सहर्ष स्वीकार करें और बिना हिचक व्यवहार करें। तो उसका उद्देश्य यही है। और ये अलग अलग प्रांतों में आप देखेंगे कि ये गलत फहमियां अलग अलग ढंग की हैं। जैसे आपने एक या दो इधर बताया तो जाके पता चलता है। जैसे मैं एक बार दक्षिण में गया था तो उधर जो हमारा हमारे जो सारथी थे ड्राइवर जो थे तो उन्होंने कहा कि सर ये सिक्के मेरे पास हैं, यहाँ नहीं चल रहे हैं आप, तो उसके बदले हमको नोट दे दीजिए। तो इस तरह की गलत फहमियां फैल जाती हैं जो कि अकारण है, क्योंकि सिक्के तो इस मामले में सुरक्षित हैं कि उनकी फोर्जरी भी आसान नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कुल मिलाकर हम अपने श्रोताओं को ये कह सकते हैं, एक या दो के सिक्के जो आप नहीं ले रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो बेझिझक उसका लेन देन करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी एक दो के सिक्के चल सकते हैं।
2: जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक दो क्या, 50 पैसे से लेके
1: जी
2: और 20 रुपए तक के सिक्के हैं
1: जी,
2: और सारे के सारे सिक्के चलन में हैं। और उसको जैसे हमने कहा सिक्के सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार करिए, सिक्के सहर्ष स्वीकार करें और बिना झिझक बिना व्यवहार करें।
1: सर सिक्कों की बात हो रही थी तो सिक्के सचमुच बहुत ही इसका पुराना इतिहास है। हम मुगल सल्तनत के समय से देखें या उससे भी पहले से देखें तो सिक्कों का ही प्रचलन रहा है। बहुत से लोग हमारे शहर में भी ऐसे हैं जो एंटिक सिक्कों की संग्रह रखते हैं। तो सर एक बात और जानना चाहूंगा, बीच बीच में भारत की ओर से, सरकार की ओर से, रिजर्व बैंक की ओर से सिक्कों को जारी किया जाता है, 50 रुपए के सिक्के, 100 रुपए के सिक्के, जो कुछ खास मोमेंट पे होता है, खास अवसर पर होता है, तो वो बाजार स्मारक सिक्के तो बाजार में नहीं आते, तो क्या वो बाजार में उपलब्ध नहीं होता, उस खास मौके के लिए ही होता है?
2: खास मौके के लिए होते हैं, लेकिन वेबसाइट के जरिए मंगा सकते हैं आप। जैसे ही कमेमोरेटिव क्वाइन करके स्मारक सिक्का सर्च करेंगे तो अलग अलग मिंट्स जो हैं, जो 4 मिंट है हमारी वो निकालते हैं, तो ऑनलाइन उसको मंगाया जा सकता है। उसकी राशि होती है, मतलब उसकी कीमत
1: मतलब
2: होती
1: वो
2: है।
1: स्मारक के रूप में ही इस्तेमाल होता है,
2: स्मारक के रूप में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब वो ऐसे उसका मूल्य तो उतना होगा ही धातु का, लेकिन वो किसी अवसर विशेष पे जारी किए गए हैं वह उनकी विशेषता होती है।
1: तो अभी 50 पैसे से लेकर 20 रुपए तक के सिक्के बाजार में प्रचलित है।
2: जी जी
1: सर, 2000 के नोटों को लेकर भी अभी कुछ अफवाहें ऐसी ही बाजार में हैं, इसके बारे में सर कुछ प्रकाश डालें।
2: नहीं, 2000 का अगर आपको याद होगा तो एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए 19 मई 2023 को एक घोषणा हुई कि 2000 के नोट चलन से वापस लिए जा रहे हैं। तो चलन से वापस लिए जाए मतलब वैध मुद्रा है, लेकिन उसको सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है। तो लोगों को अवसर दिया गया किसी भी बैंक शाखा में जाके उसको बदलना संभव रहा, और ये सुविधा 30 सितंबर तक दी गई थी, जो एक सप्ताह आगे बढ़ाई गई और 7 अक्टूबर तक 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में ये सुविधा रही। उसके बाद भी अभी भी ये 2000 के नोट वैध मुद्रा हैं, और अभी ये सुविधा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो 19 इशू ऑफिसेज हैं जहाँ नोटों का लेन मतलब नोटों के बारे में जहाँ कार्य होते हैं, निर्गम केंद्र बोलते हैं उनको, तो वहाँ पे वो उसको बदला जा सकता है अभी भी। जैसे कलकत्ता और पटना ये दोनों इशू ऑफिसेस हैं रिजर्व बैंक के वहाँ पे, तो इसके अलावा डाक से भी बदलने की सुविधा दी गई कि डाक से आप वो नोट भेज सकते हैं अपने अकाउंट डिटेल्स के साथ, खाते के विवरण के साथ, जिसके बाद वो उसके मूल्य के बराबर राशि आपके खाते में वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये सुविधा अभी भी है।
1: उसके लिए कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता
2: है, एक पृष्ठ का एक सरल फॉर्म है और आपके उसमें अकाउंट की जानकारी वगैरह होती है, और डाक विभाग के साथ वो अरेंजमेंट है तो उसके जरिए आप भेज सकते हैं। तो उसमें क्या है कि फिर आपको खुद वहां जाने की जो जरूरत है वो नहीं रह जाती है। तो कई बार हमारे यहाँ भी जो लोग पहुँचते हैं उनको बड़े सरलता से ये सब चीज़ें समझा दी जाती हैं। वो हमारे वेबसाइट पे फॉर्म भी अवेलेबल है, और किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ भी उपलब्ध है। और अभी की स्थिति यह है कि लगभग 98% से भी ज़्यादा वो 2000 के जो नोट हैं वो
1: वापस
2: आ चुके हैं। तो जो मतलब 98.21% कुछ दिनों पहले की ये स्थिति है, तो लगभग मतलब अब 1.5-2% बचे हुए हैं, तो उनको भी लोग इस तरह से
1: जी बिल्कुल लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं।

0: वाली नहीं है, लेकिन माँ अखबार पढ़ती है रोज आज भी, तो वो बताई कि नहीं नहीं मैं पढ़ाऊं कहीं अभी बदला जा सकता है, तो मैं देखा कि नहीं इन्हें ठगा नहीं जा सकता तो मैं वो नोट लेके गया पोस्ट ऑफिस और बड़े ही सरल ढंग से, जैसा कि आपने बताया, एक पन्ने का एक फॉर्म था, उसे भरा और जमा कर दिया मैंने, और कुछ ही दिनों के बाद पैसे बैंक खाते में वापिस आ गए। मेरी माँ भी खुश हो गई। तो मैं कहना चाहूंगा श्रोताओं से, आप भी खुश हो सकते हैं, अगर आपके पास अभी भी 2000 के नोट है तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल आप अपने पोस्ट ऑफिस पे आएं, हमारे डाल्टनगंज मेदिनीनगर का जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहां पर आप आए और संपर्क करें अधिकारियों से, आपको एक एक पन्ने का फॉर्म दिया जाएगा, आप उसे भरकर वहीं पर जमा कर दें नोट के साथ आपके खाते में और वो वापिस आ जाएंगे। तो सर ये तो रही 2000 की नोटों की बात, गलतफहमियों की बात, एक और बात मेरे जहन में है सर, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, कटे फटे नोट ये एक परेशानी का सबब है और दलाल जैसे लोग सक्रिय हो जाते हैं इसमें, खास करके शादी ब्याह का समय अभी है सर, तो वो लोग कटे फटे नोट बदलने के लिए बहुत हेवी अमाउंट ले लेते हैं कि हमें देना पड़ता है बैंकों को ऐसा करके, जबकि जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बैंकों के माध्यम से आप कटे फटे नोट आसानी से बदल सकते हैं, तो इस पर जरा प्रकाश डालें सर।
1: नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में कटे फटे नोट कोई भी लेके जा सकता है, चाहे वो उसका ग्राहक नियमित ग्राहक हो या नहीं हो,
0: मतलब खाताधारक होना भी जरूरी नहीं है।
1: नहीं है, तो ये जानकारी का अभाव है, कई बार ये जानकारी का अभाव दोनों तरफ होता है, तो और इसके साथ साथ ये निर्देश है कि हर बैंक शाखा को ये प्रदर्शित करना है अपने बैंकिंग हॉल में कि यहाँ कटे फटे नोट बदले जा सकते हैं और स्वीकार किए जाते हैं।
0: अच्छा, ये बैंक को लिखना है
1: निर्देश? हाँ, वो डिस्प्ले करना है, उनके प्रदर्शित करना है, तो ये भी जानकारी कई बार लोगों को नहीं होती है, तो उसके अभाव में वो फिर वो बाकी जो किसी के चक्कर में अगर पड़ जाते हैं, तो अगर बैंक शाखा में आप जाएंगे और वो चाहे वो मैले नोट भी हो, सॉइल नोट जिसको कहते हैं
0: जी,
1: वो भी अगर कटे फटे होंगे तो नोट रिफंड रूल है रिजर्व बैंक का, तो उसके आधार पे उनको पूरी राशि या फिर आधी राशि, बीच वाली कोई स्थिति नहीं होती है
0: जी,
1: वो
0: मैंने नोट के हिसाब से कितने कटे फटे हैं, वो
1: कितना हिस्सा उपलब्ध है।
0: अच्छा, वो भी एक है कि हिस्सा, मतलब एक नोट मान लीजिए 10 रुपए का एक नोट है, वो आधा मेरे पास है तो वो भी लेकर हम जा सकते हैं?
1: अगर आधा है उसका, उनके पास बैंक में एक मेजरमेंट का ये होता है, पैड होता है, तो उसमें वो नापते हैं, तो नोट रिफंड रूल के हिसाब से अगर वो 50% या उससे ज्यादा हुआ, और डिनोमिनेशन पे भी निर्भर करता है, छोटे डिनोमिनेशन में वो या तो मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन बड़े डिनोमिनेशन जो हैं 50 है उससे ज्यादा वाले, तो उसमें आपको रिफंड रूल के हिसाब से वो मिल जाएगा। यहां तक कि कई जगह कई बार होता है कि किसी कारण से नोट जल गए, तो उनके लिए भी प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो हो गया तो उसके लिए,
0: मतलब हताश होने की जरूरत नहीं है,
1: मतलब विशेष प्रावधान है उसमें, फिर वो देखा जाता है उसी नोट वापसी के जो नियम है उसके अंतर्गत कि क्या देय है, उसके हिसाब से वो पेमेंट होता है। और अभी जो सबसे ताज़ा जो प्रगति है इस दिशा में, जो अभी पायलट स्टेज में है, आपने सुना होगा CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो वो अभी परीक्षण स्तर पे है, जिसमें सीमित लोगों के बीच में परीक्षण हो रहा है, तो उसका रिटेल जो है, जो आम लोगों के लिए, तो उसमें कुछ बैंकों के साथ और कुछ ग्राहकों के साथ वो पायलट जिसको कहते हैं स्तर पे अभी है, तो उसमें ये सब सुविधा है कि उसमें ये जो नोट खो जाने, कट जाने, जलने, इसका संकट नहीं रहेगा, क्योंकि वो वही नोट आपके CBDC वैलेट में रहेंगे। तो ये भी एक इस तरह के नए जिसको नवोन्मेष करते हैं
0: जी सर, तकनीक का इस्तेमाल करके सहूलियत दी जा रही है,
1: करते हैं कि ताकि लोगों को, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हर संभव सुविधा उनको मिल सके
0: जी।
1: और इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक जो सुविधाएं उपलब्ध कराता है, चाहे वो ऑम्बुड्समैन के स्तर पर शिकायत की सुविधा हो, कुछ भी, वो निःशुल्क उपलब्ध कराता है
0: जी। सर ऑनलाइन की बात हो रही थी, तकनीक की बात हो रही थी, तो हम सीधे ऑनलाइन ही बात करते हैं सर अभी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे श्रोताओं को आप बताएं, कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये तो सर बहुत हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक तो आजकल टेलीफोन में मोबाइल पे अगर रिंग आता है तो रिंग में भी सावधान किया जाता है, मैसेज आ रहे हैं आरबीआई की तरफ से, आपके तरफ से हमेशा जारी किए जा रहे हैं, फिर भी सर फ्रॉड हो

0: जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए दुर्भाग्यजनक तरीके से हमारे किसी साथी का जो फ्रॉड हो गया, ऐसा उनके साथ दुर्घटना घट गई, तब वो क्या करें? ऑनलाइन फ्रॉड अगर हो जाए, उनके बैंक खाते से पैसे की निकासी किसी ने कर लिया गलत तरीके से, तब वो क्या करें सर इमीडिएट, ये जानकारी सर थोड़ा दीजिए।
1: जी, तो उसमें देखिए दोनों पक्ष हैं, और अभी हमने चर्चा भी की कि भारतीय रिजर्व बैंक जो अपने डेवलपमेंटल जो उनकी उनका काम है, विकासात्मक कार्य, उसके अंदर जो सबसे जरूरी होता है कि घटना ना हो, इसके लिए जो जागरूकता लोगों के बीच में, उसको बढ़ाना। तो जैसा हमने कहा कि कई स्तरों पर जागरूकता, आप जागरूकता संदेश देखते होंगे, सुनते होंगे टेलीविजन, रेडियो और बाकी सब माध्यमों से, छोटे छोटे सुंदर वीडियो संदेश भी आते हैं जिसमें तरह तरह की जो धोखाधड़ी की घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताया जाता है, है ना, चाहे वो KYC अपडेट करने से लेके बाकी जो प्रलोभन देके होते हैं उस तरह से। और हम लोग अपने स्तर पे ये करते हैं कि जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो पहले तो एक हो जिसको प्रिवेंटिव जिसको कहते हैं मेजर्स की, वो हो ही नहीं, तो हो ही नहीं, उसके लिए जैसे हमने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय की तरफ से हमने सोचा कि बच्चों को अगर युवा अवस्था में, बिल्कुल यंग एज में बता दिया जाए, वो छोटे हैं तो वो जब जान जाएंगे, और इसके लिए बहुत कुछ बुनियादी सावधानियां होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए मशक्कत की जरूरत नहीं होती है, बेसिक बुनियादी चीज़ें होती हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे 90वें वर्ष में हम लोग 90 शिक्षण संस्थानों में गए और हमने बच्चों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्विज करा के, और एक हम लोगों ने सारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देश भर में क्विज भारतीय रिजर्व बैंक ने कराया था जिसमें 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। तो उद्देश्य है कि जो अलग अलग लक्षित वर्ग हैं, बच्चे हो गए, फिर हम लोगों ने जो वित्तीय जागरूकता सप्ताह किया तो महिलाओं पर केंद्रित किया, चाहे वो गृहिणियां हों, कामकाजी महिलाएं हों, या उद्यमी महिलाएं हों, SHGs की महिलाएं हों, तो उनको अलग अलग लक्षित समूह को ये बताना, और इस तरह से बताना है कि उनके जहन में रहे। जैसे हम लोगों ने बच्चों के लिए एक ज्ञान बाण कार्यक्रम किया, अवेयरनेस थ्रू आर्चरी, तीरंदाजी के जरिए जागरूक था, तो उसमें बच्चों को तीरंदाजों से हमने तीरंदाजी का अभ्यास कराया, खेल खेल में सिखाने के लिए यह किया कि जो लक्ष्य थे टारगेट्स उनके नाम हमने रखे लालच, भय, अज्ञान, अविवेक और जल्दबाजी। तो कुल मिला के जितनी भी धोखाधड़ी की घटनाएं होती हैं इन्हीं कारणों से होती हैं, या तो प्रलोभन दिया जाता है, आपकी राशि दुगनी हो जाएगी, आप यहां पैसे लगाएं, कई बार कुछ समय तक वो ऐसा करके दिखा भी देते हैं और बाद में जब बहुत लोगों की राशि इकट्ठी हो जाती है तो चले जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि जो अधिकृत जो वित्तीय संस्थान है, जो रेगुलेटेड है, किसी भी RBI से हो, SEBI से हो, IRDA से हो, वहीं अपने पैसे रखें। जैसे बैंक में पैसे रखेंगे तो 5 लाख तक प्रत्येक खाते में सुरक्षित है, तो पहला तो ये हुआ। तो ये हो गया कि प्रलोभन से बचें, किसी भी तरह के प्रलोभन से। सभी बैंक जो है अपने जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज जो देते हैं अपने जमा राशि पे, वो प्रदर्शित करते हैं, वो अखबारों में भी आते हैं, उनके वेबसाइट पे भी रहते हैं, लोगों को मालूम भी रहता है। जैसे ही उससे ज्यादा अगर कोई प्रस्ताव दे रहा हो तो आप देखते होंगे अलग अलग, कभी वो सदी के महानायक की तरफ से होता है संदेश, कभी खिलाड़ी जो हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं वो संदेश देते हैं कि आप, किसी ने कहते हैं ना, किसी ने 2 ओवर में 3 ओवर सेंचुरी बनाई है क्या, मतलब कि रातों रात या बहुत जल्दी पैसे बढ़ाने, तो प्रलोभन से बचें। दूसरा है कि भय देकर भी बहुत लोग धोखाधड़ी करते हैं, आपकी बिजली कट जाएगी, आपके गैस कनेक्शन कट जाएगा, और आजकल वो रिटायर्ड लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप, अगर उन्होंने गलती से उठा लिया वीडियो कॉल तो कहते हैं आप वहीं रहिए, वहां से जाइए नहीं, इतने पैसे भेजिए। तो हम लोग बताते हैं कि आप जो बुनियादी सावधानियां हैं, OTP शेयर न करें, अपने जो बैंक की जरूरी जानकारियां हैं वो सार्वजनिक जगह पर या कहीं स्टोर करके न रखें या किसी को बताएं नहीं, अनजान लिंक पे क्लिक न करें, अनजाने कॉल न उठाएं, वीडियो कॉल न उठाएं। और तो लालच हो गया, भय हो गया, कई बार जानकारी का अभाव होने से धोखाधड़ी घटनाएं होती हैं। जैसे कि एक छोटा उदाहरण दूंगा कि किसी के पास अगर ये संदेश आता है कि हम आपको एक QR कोड भेज रहे हैं, आप इसको स्कैन कर रहे हैं, हम आपको 1,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये देंगे, कारण वो कुछ भी बता सकते हैं, तो एक तो उन्होंने प्रलोभन दिया, दूसरा इसमें यह भी बात छिपी हुई है कि अगर थोड़ी जानकारी हो तो ये पता रहेगा कि QR कोड आप जहां चाहते हैं, आपने कुछ खरीदा कुछ खाया उसके लिए भुगतान करने के लिए होता है, कभी भी पैसे रिसीव करने के लिए प्राप्त करने के लिए QR कोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह से ये जितने भी आपने बताया कई तरह से कई संस्थाएं भी हैं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साथ बाकी संस्थाएं जो बताती हैं कि आप ये सावधानियां बरतिए, KYC अपडेट करने के लिए कोई कॉल नहीं करेगा आपको मोबाइल पे, इस तरह से जानकारियां दी जाती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ एक रहता है कि कुछ भी आप एक गतिविधि ऐसा करें कि आपका जो गैजेट है चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो वो उस पर उनका एक्सेस उनकी पहुंच बन जाए, फिर जो उसकी गोपनीय जानकारियां हैं उसके जरिए वो ट्रांजेक्शन करते हैं। और सबसे जरूरी ये होता है कि कई बार जानकारियां सारी होती हैं, तो जिसको एक टारगेट का नाम ने अविवेक रखा कि मतलब सारी जानकारियां हैं लेकिन उस समय आप उसका व्यवहार नहीं कर रहे हैं,
0: विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं
1: और जल्दबाजी कर रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ भी हो तो अगर आधे घंटे एक घंटे आप रुक जाएंगे किसी जानकार आदमी से उसको सत्यापित कर लेंगे तो ऐसे ही वो घटना टल जाएगी, क्योंकि वो इस तरह की स्थिति बनाते हैं कि आप जल्दबाजी में उनके हित में कोई कदम उठा लें। तो इससे बचने के लिए जो अवेयरनेस है, फिर भी अगर किसी तरह किसी के आपके साथ नहीं आपके आसपास घर परिवार में अगर कोई इस तरह की घटना हो गई तो साइबर फ्रॉड के लिए एक 1930 जो नंबर है 1930, जो आपने कहा भी कि आजकल हर कॉल उठाते समय बताया जाता है कि ये करें और न करें, और अगर कोई घटना हो जाए तो आप तुरंत 1930 पर उसको रिपोर्ट करें, निःशुल्क ये नंबर है। और फिर जो cybercrime.gov.in पोर्टल है उस पर जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इससे होता यह है जिसको कहते हैं गोल्डन आवर रूल, कि जितनी जल्दी आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो जो राशि आपके खाते से निकल ली है वो वहीं फ्रीज हो जाएगी और उसके लौटने की जो संभावना है उतनी त्वरित और उतने उसकी निश्चितता हो जाएगी। दूसरे ये है कि अगर बैंक खातों के संदर्भ में लिमिटेड लायबिलिटी का एक रूल है कि अगर 3 दिन के अंदर आपने बता दिया अपने संबंधित बैंक को और आपकी कोई गलती नहीं है तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी गलती नहीं है, जैसे ये गलतियां ही होती हैं कि आपने कुछ जानकारी साझा कर दी या कोई लिंक क्लिक कर दिया, ऐसे कोई भी अगर धोखाधड़ी की घटना हो गई तो इससे आपका बचाव हो जाएगा। और हम लोग अपने जो वेबसाइट है और इसमें तो लोगों के लिए भी उपलब्ध है, वो rbi.org.in जो है www.rbi.org.in, तो उसमें जाकर आप देख भी सकते हैं। तो इसमें जो मास्टर दिशा निर्देश है जो 1 अप्रैल का है तो उसमें भी बहुत सारी जरूरी जानकारियां हैं। दूसरे हमेशा आप कोई भी संस्था है जहां आप वित्तीय संस्था जहां आप पैसे रखना चाह रहे हैं तो हमेशा वो आप जांच भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके कि ये अधिकृत संस्था है या नहीं, क्योंकि कई बार कई संस्थाएं अपना छद्म रूप लेके या बैंक नाम का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो थोड़ी सी ये जो जरूरी सावधानियां हैं आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकती हैं अगर किसी कारण से वो घटना घट गई तो, जैसा 1930 या 1930 जो है वो नंबर। और अच्छी की बात है कि जब हम लोग जैसे कल भी हमने यहाँ कार्यक्रम किया आज भी किया, बच्चों से भी पूछते हैं तो अधिकांश लोगों का भी ये नंबर याद हो गया है। तो यही कोशिशें हो रही हैं कुल मिला के कि इस तरह की घटनाएं पहले हो नहीं सावधानियों से, अगर हो जाए तो लोग जल्दी से जल्दी ये शिकायतें दर्ज करें।
0: बिल्कुल, जैसे कि कहा गया है आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और इसी के बल पर सुरक्षित भी रहें। ऐसी घटनाओं को घटने ही न दें ताकि आपको 1930 भगवान न करे कभी डायल करने की जरूरत पड़े। सर, बातें हो रही थी जानकारियों की, बस जाते जाते काफी वक्त दिया आपने, बहुत विशद जानकारियों को साझा किया हमारे श्रोताओं के साथ, निसंदेह वो उनको लाभ मिला होगा। एक बात सिर्फ और आपसे पूछना चाहूंगा सर, वो ये कि हमारे युवा श्रोता काफी हैं सर, आपको जानकर बेहद खुशी होगी, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र को काफी युवा सुनते हैं, उनके लिए यह सवाल है खासतौर पर कि बैंकिंग के क्षेत्र में फिलहाल युवाओं के लिए क्या भविष्य छुपा हुआ है, कैसे वो तैयारी करें, कैसे बैंकिंग में सेक्टर में आना चाहे तो उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये बताएं सर।
1: जी मैं तो चाहूंगा कि लोग बैंकिंग सेक्टर में आए, क्योंकि ये एक सेक्टर है जो सीधे सीधे अगर आप में वो जज्बा है तो जनता को, जनता की बेहतरी के लिए आप बहुत कार्य कर सकते हैं।
2: आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के साथ। हम सुनेंगे आज उमंग का कड़ी संख्या 1313।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का, सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
3: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओ कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
3: जी।
4: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
5: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?

0: तरह से आता है।
1: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
0: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
1: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
0: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है तो आइए।

0: चलिए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
0: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
3: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है।

नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट

0: के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे, 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था, बस फिर क्या था। उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ, ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था, लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो
2: संभल कर।
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यहीं पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
3: हमला करो दुर्गा माता की जय। माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू बीवी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
4: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं नहीं

उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार
2: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, FM के 103 MHz पर। आइए दोस्तों, अब हम जुड़ते हैं अपने दिल्ली, रांची व मुंबई केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती द्वारा प्रस्तुत अन्य कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

दोस्तों अभी आप हमारे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। 10 बजे हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे हिंदी समाचार, 10:05 पे अंग्रेजी समाचार और 10:10 पे मुंबई केंद्र से जुड़कर सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति सेहतनामा। इसके बाद दोस्तों लगातार शाम 5:30 तक हमारा जुड़ाव दिल्ली, रांची और मुंबई केंद्रों से बना रहेगा, जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती द्वारा प्रस्तुत अन्य कार्यक्रमों को। इसके बाद दोस्तों शाम 5:30 पर आकाशवाणी के डाल्टन केंद्र से जुड़कर सुनेंगे सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को। तो आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेत्री तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी निवासियों के नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप ज़ख्मी हो गए और वो ज़ख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है ज़ख्म भरते ही।
0: जी,
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
0: जी जी
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
0: जी
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं।

0: मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
1: बिल्कुल
0: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता
1: बिल्कुल सही बात,
0: जितना अधिकार आपका आपके बाप
1: मां से
0: के
1: मिलता
0: यहाँ।
1: है बिल्कुल।
0: तो जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले। लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था
1: चल रही थी।
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था।
1: जी
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे थे,
1: जमा हो रहे थे,
0: और एक
1: क्या
0: दिन
1: बात
0: वो
1: है।
0: फट गया
1: ओहो
0: और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ।
1: जी
0: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा,
1: जी
0: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं, लड़की।
1: जी जी जी
0: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का,
1: जी
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है,
1: उस
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते हैं। वो जो खरोचे होती है वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह,
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
1: वाह वाह वाह।
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है,
1: जी
0: हम
1: जी।
0: उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
1: हाँ।
0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको, नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को।
1: जी।
0: वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है,
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
0: तो दर्द हीरा है दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं, नानी की जो बातें हैं आपने जिक्र किया, नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं नानी की जबान से सुनी हुई, वो कहानियाँ, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है यार।
1: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी
0: मैं
1: का।
0: मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है। ओह,
0: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है, माँ के साथ एकाध वाकया जरूर याद है लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था,
1: जी जी
0: तो उसी में उनकी

0: की डेथ हुई, तो नानी ने बहुत प्यार किया और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी मामू से, अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो, तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने, तो बहुत सारे वाक़े हैं मेरे लिए, सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत
1: जी जी।
0: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से, एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था, जैसे मैं गणित में कमजोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमजोर था, बाकी सब में राइटिंग वगैरह में, आलेख में
1: तेज से,
0: बहुत तेज था मैं। हाँ,
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ, सूरत में।
1: जी, सूरत में
0: जी।
1: तो वो क्या वाक्या है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
0: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
1: जी,
0: और गुजरात उर्दू एकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था, और ये बात है 1994 की।
1: जी, शीनकाफ निजाम भी आए थे इसमें।
0: शीनकाफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, वो उसका संचालन किया था
1: जी।
0: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है।
1: कुंडली आपकी पता है। लेकिन अभी श्रोताओं तो कुछ नहीं आया। सारी तो
0: उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
1: जी,
0: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीनकाफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
1: जी,
0: सब
1: जी।
0: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
1: जी,
0: मुल्क
1: जी,
0: में। संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था। और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब, तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
1: जी जी,
0: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई, तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निजाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे,
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
1: और उसमें जावेद प्रूफ करने का जरूरत था।
0: हाँ, जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हूँगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवानही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ।
1: क्या बात है,
0: है ना
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
1: जी,
0: उनको
1: जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने भी, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी
0: है, अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना, और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी है, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो, तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतला सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
1: क्या बात है,
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए,
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह,
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना, हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते,
0: नजर,
1: हिम्मत नहीं करते।
0: हाँ, नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली
1: जी, जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं,
1: क्या बात है,
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह,
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया इसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही कहो जाए,
1: क्या बात है बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी जी,
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती

0: या एक दूसरे को सुनते हैं या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा। ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया है।
0: इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतूत का जमाना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ मैं।
1: जी,
0: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने
1: जी। तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है। एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की हैं। आपका भी जिक्र हुआ था,
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी।
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो,
0: जी
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये
1: हाँ,
0: बात तो नहीं पता थी।
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते
0: क्या बात है,
1: हैं।
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो
0: जी,
1: किताब पढ़ते हैं,
0: बहुत
1: नावेल
0: पढ़ते
1: और
0: हैं जी।
1: कहानियाँ बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था,
0: जी
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती
0: जी
1: हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी
0: थप्पड़
1: 80 तक,
0: और भीड़ ये
1: भीड़ और
0: सब
1: 80 तक आया है,
0: आर्टिकल 15
1: आर्टिकल
0: बिल्कुल अलग है।
1: फिफ्टीन, थप्पड़, अनेक, ये सारी सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है, या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थीं
0: जी
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थीं, और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी। और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे, वो गानों से ही आए थे। अनुभव सिन्हा साहब वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था,
0: जी,
1: तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे उस, तो
0: और
1: वो
0: सुंदर फिल्मांकन किया
1: हाँ,
0: उन्होंने।
1: बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक
0: जी,
1: है, वो भी मेरी खुशनसीबी
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
1: है। हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले,
0: पहले
1: जो
0: वाले
1: पहला
0: नहीं।
1: वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
0: देर आए दुरुस्त
1: तो
0: आए।
1: हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस

0: कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने
1: जी
0: वाले
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं,
1: जी
0: कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूं। वो जो स्कूल जहां पढ़ता था वहां जाता हूं अकेला और उसको फील करता हूं मैं, सिर्फ फील करता हूं खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी,
0: है,
1: जी,
0: बड़ा
1: जी,
0: खूबसूरत सा
1: जी,
0: नाम भी है बनारस।
1: उनके नंबर पर वही लिखा हुआ था,
0: हाँ हाँ हाँ
1: व्हाट्सएप नंबर
0: हाँ
1: पर।
0: तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी,
1: जी जी
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद,
1: जी
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे।
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार फिर,
0: जिद,
1: जिद फिल्म,
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
1: जी जी।
0: तो मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज़े इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी। जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी। ये जो मैंने अभी नाम लिए, मैंने ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया है ना। तो ये पिक्चर भी नहीं चली। उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में।
1: जी, क्या बात
0: तो
1: है।
0: ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया। पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है,
1: जी,
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र
0: हाँ
1: किया आपने।
0: हाँ हाँ
1: वहां
0: हाँ
1: पर जगजीत सिंह साहब ने एक
0: जी
1: गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब, और साथ में रेखा भारद्वाज की
0: जी
1: आवाज
0: हाँ
1: थी।
0: जी हाँ
1: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं
0: जी हाँ,
1: है।
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूं मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें,
0: हाँ,
1: उस गाने।
0: लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर, वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी।

0: आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना,
1: जी
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर,
1: वाह,
0: ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में हैं, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए।
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह, क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए,
1: क्या बात,
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई,
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई,
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे,
1: क्या बात है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे श्री राम भजन चंदन दास की आवाज में। राजेंद्र राजवंशी ने इसे लिखा और सरस्वती कुमार दीपक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे स्वर बहार एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने, अनजान के बोल और श्याम शर्मा ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
5: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
4: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
5: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
4: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
5: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
4: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और सुनते हैं रंग तरंग का अगला नगमा, नुमाइश एल्बम से। पंकज उदास की आवाज है, जफ्फार गोरखपुरी ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने।

0: सीमा शर्मा का गाया हुआ ये नगमा हम सुन रहे थे। दलीप ताहिर ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के

0: स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में गीत गजल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज में, जिसे बेनी सतामकर ने संगीतबद्ध किया है। सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

एक शेर पे मुकर्रर की आवाज आई तो वे शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस नगमे को, जिसे खयाम ने संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी ने जिसे लिखा है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा सुधा मल्होत्रा की आवाज में। पीरजादा सफक लखनवी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने इस नगमे को संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत पंकज उदास और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से जुड़ा हुआ यह गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, यानी आज के कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी गीत है जिसे हमने चुना है वेलवेट वॉइस हरिहरन एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने और इसे लिखा है मुशीर ने। चलिए सुनते हैं ये नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सर अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सर अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी ये उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे गीत बाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देववर्मन ने इसे संगीत दिया है।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म सीआईडी का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

में कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत, जो कि है 12 o'clock फिल्म से। गीता दत्त की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

0: रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जिंदगी है, तुम मुस्कुराए जा। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जिंदगी है, तुम मुस्कुराए जा।
1: हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से, गीता दत्त की आवाज में, जानेसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने, और कनू रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York,

0: P. Harish in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asif Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations call for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant and maintain constant situational awareness. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. For assistance, the embassy has issued emergency helpline numbers +98912810-9115, +98912810-9109, +98912810-9102, and +98993217-9359. Indian nationals can also contact the embassy through email at cons.tehran@mea.gov.in and mail to cons.tehran@mea.gov.in. U.S. Secretary of State Marco Rubio has begun a three-day tour of the Gulf region aimed at reassuring key Arab allies following Washington's newly negotiated agreement with Iran after the conclusion of the four-month U.S.-Israeli conflict with Tehran. Rubio arrived in Abu Dhabi late last night and is scheduled to hold talks in the United Arab Emirates, Kuwait and Bahrain before meeting officials from the Gulf Cooperation Council later this week. The Enforcement Directorate ED is conducting search operations at five locations in Delhi in connection with the money laundering case linked to 3,000-kilogram Mundra port drug import case. ED officials said that the searches have been conducted at premises linked to Harpreet Singh Talwar, Samshuddin and their associates. The officials added that the drug money was allegedly invested in nightclubs in Delhi. Harpreet Singh Talwar had earlier been arrested by the National Investigation Agency NIA in the same case and was recently released on bail. Further investigation is underway. Heavy Industries Minister H.D. Kumaraswamy today urged the steel industry to embrace digitalization as a cornerstone for future growth. Addressing the Chintan Shivir on digitalization in the steel sector in New Delhi, he said the country has maintained its position as the world's second largest steel producer since 2018. The minister said that the crude steel production has grown at nearly 8% annually since financial year 2021-22, while finished steel consumption has risen by approximately 13%, driven by strong domestic demand. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Similar weather conditions are expected to prevail over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra in the next 2 days. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Odisha, Telangana and West Bengal and Sikkim till the 29th of this month. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab. In the FIFA World Cup 2026, Colombia have qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in the group game match. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग के नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के चिकित्सा ढांचे को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का विपक्ष पर तीखा हमला। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को चुनावों में मिला करारा जवाब। नामांकन गड़बड़ी की जांच के लिए रिम्स पहुंची सीआईडी की टीम। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, गड़बड़ी में शामिल दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा झारखंड का पक्ष। किसानों के लिए मांगा राहत पैकेज। और संताल दौरे के दूसरे दिन साहिबगंज के बरहरवा पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। बीएलओ प्रशिक्षण का किया औचक निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नव नियुक्त अभ्यर्थियों को अब से थोड़ी देर बाद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस विशेष समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित हैं। समारोह के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सक, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर जैसे पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को खारिज कर डेस्क थपथपाकर जश्न मनाया था, जिसका महिलाओं ने चुनावों में करारा जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि दशकों से लंबित इस ऐतिहासिक कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हकीकत में बदला है।
2: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण देने की जो बात थी, जो उन्होंने रिजेक्ट किया, तो उनको पता चल गया कि महिलाएं सब बर्दाश्त कर सकती है, अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। और जब ये बिल गिरा तो मेज थपथपाकर उन्होंने खुशियां मनाई। तो बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में करारा जवाब उन्होंने दिया है और महिलाओं का उसका अधिकार मिले। कई दशक से ये बिल आ रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको मूर्त रूप दिया है और आने वाले समय में उनको पूरा अधिकार मिले, इसके लिए सहयोग करें।
1: राज्य में ठोस कचरे से बिजली उत्पादन की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। शहर का कचरा लोगों के लिए परेशानी नहीं बल्कि बिजली का एक नया और पर्यावरण अनुकूल स्रोत बनेगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के जरिए प्रतिदिन ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और ग्रिड को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति होगी।
3: सिंगल यूज प्लास्टिक्स हम बिजली उत्पादन कैसे करें, उसके लिए हम एक विजन प्लानिंग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। एकाध दो स्टेटों में इस तरह की मॉडल शुरुआत हुई है। जिन स्टेटों पर इस तरह का मॉडल तैयार करके प्रोडक्शन लिया जा रहा है, उसका हम अवलोकन करने की, राज्य में भी हम लोग इस तरह का एक दो प्लांट लगाएंगे ताकि कचरा का कचरा प्रबंधन भी हो जाए और बिजली भी हम उससे ले पाए।
1: इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केवल घोषणाएं करने से धरातल पर काम नहीं होता और पूर्व की कई कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। श्री शाह ने कहा कि नगर निगम और प्रशासन पहले शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था को सुधारे, क्योंकि कचरे का सही उठाव न होने से जनता त्रस्त है।
4: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का स्कीम था, वो करप्शन के भेंट चढ़ गया। छोटे छोटे नगर परिषद आप जाइए या नगर निगम जाइए, वहाँ पर आपको एक ही कहानी मिलेगी, या तो जमीन नहीं मिल रही है, और अगर जमीन मिल भी गई तो वहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट पावर प्लांट है वो कई सालों से नहीं लगा। अन्य योजनाओं की तरह यह भी करप्शन के भेंट चढ़ेगा।
1: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद के बरवाड्डा में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा चुनाव में गठबंधन उम्मीदवार की हार के लिए भाजपा पर धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य में 200 से अधिक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को लाया गया है और जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार से राज्य के किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने टिड्डी हमले के खतरे से निपटने के लिए राज्य की सतर्कता और आकस्मिक कार्य योजना की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित रिम्स में नामांकनों में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए झारखंड सीआईडी की टीम अस्पताल पहुंची है। सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिम्स प्रबंधन से मुलाकात कर पूर्व में हुए एडमिशन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फाइलों को अपने

0: कब्जे में ले लिया है। इस बड़ी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
1: जांच का आदेश दिया था राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जो यूजी और पीजी एजुकेशन जो ले रहे हैं, प्रवेश पत्र जो काउंसलिंग जो हुआ था, तो उसमें कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र गलत दे दिया है, भेज दे दिया है। तो उसी के तहत हमने जाँच का आदेश दिया था और 3 मेंबर्स की कमेटी हमने बनाकर थोड़ी जाँच करो।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन आज साहेबगंज के सीमावर्ती प्रखंड बरहरवा का दौरा किया। उन्होंने +2 उच्च विद्यालय में बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर अंतर्गत सोन पोखरी गांव में खेत की जुताई के दौरान एक पुराना मोर्टार शेल मिलने से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते की मदद से इस भारी विस्फोटक को सुरक्षित कर दिया है। पुलिस के अनुसार सेना की विशेषज्ञ टीम की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेडियो फरमाइशों के लिए दुनिया भर में मशहूर कोडरमा का डुमरी तिलैया अब एक खास मिठाई के लिए विश्व मानचित्र पर चमकेगा। ये मिठाई केसरिया कलाकंद है जो जीआई टैग पाने वाला राज्य का एकमात्र खाद्य पदार्थ बन गया है। 60 के दशक में विभाजन की त्रासदी झेलकर पाकिस्तान से आए हंसराज और मुल्कराज भाटिया परिवार ने इस हुनर की नींव रखी थी। इस उपलब्धि से स्थानीय व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई उड़ान मिलेगी।
2: 60 साल पहले हम लोग पाकिस्तान से जो डिवाइड हुआ उसके बाद में यहाँ के बसे हम लोग तिलैया में, मिठाई की दुकान खोली और सबसे फर्स्ट कलाकंद हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। इतना फेमस हुआ कि फॉरन तक गया। फादर का ये प्रोडक्ट है, जीआई टैगिंग हमको मिल रही है, इसका सुन के बहुत ही खुशी हुई है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
0: आज दोपहर के सेशन में घरेलू इक्विटी इंडेक्स लगभग 0.7% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। सेंसेक्स 603 अंक बढ़कर 76,804 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपये प्रति ग्राम 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो है। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुरक्षित और सुगम यात्रा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत और नए सुरक्षा केंद्रों की स्थापना से नागरिक सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुलभ हुई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के चिकित्सा ढांचे को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को चुनावों में मिला खरारा जवाब। नामांकन गड़बड़ी की जांच के लिए रिम्स पहुंची सीआईडी की टीम। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा गड़बड़ी में शामिल दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा झारखंड का पक्ष। किसानों के लिए मांगा राहत पैकेज और संताल दौरे के दूसरे दिन साहेबगंज के बरहरवा पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। बीएलओ प्रशिक्षण का किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब

चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, फिल्म पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से आज तक बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के ज़माने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती, HMT टाइटन की घड़ी के साथ। अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे, बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से याद बात याद आई, 1983 में जितेंद्र श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखाकर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्ड्रोब भरा रहता है और शिफॉन और सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी कॉटन, क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती हैं जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारे एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली यही वीना रॉय ने पहनी है, और रंगोली चित्र का चित्रहार में उस गाने को देखती हैं तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है, क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएं आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी, बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी वह उनके साथ गई, साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई, तब उन्हें डिजाइन ने एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी है उसी को देखकर बनाया। बहुत बढ़िया बात है, यह भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में, और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिज़ाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पल के लिए आंख बंद कीजिए, आंख बंद कर ली, अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, जरा उसका नाम लिख दीजिए। ये बात पुरुष और महिलाओं दोनों श्रोताओं पर लागू होती है, कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, जरा उसका नाम हमें लिख भेजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम।

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत, ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आंख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं बंद

0: आँख से मैसेज कैसे लिखें आँख खोलने के लिए, तो कही हाँ हाँ आप आँख खोल सकते हैं और आँख खोलकर संदेश भेज सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नजरों में कृति सेनन भी है, वो कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आंख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती है, तो ब्रह्मचारी में मुमताज की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं, जैकी श्रॉफ को उनके धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहाँ कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहनाकर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझकर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है, तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन कराकर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े बोली सब बचकुछ बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा है शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विग पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो विग पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहां भी घूमने गए वहां पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं, हुआ होगा ना। ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहां की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ,

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, और आप सबने सही पहचाना आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर, इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं, लुक्स हैं, उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिजाइन और स्टाइल किया था, पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी, जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी, सत्यवान और बीआर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में। और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं, और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या? तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहां जाकर फोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फोटो खिंचाई है हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहां के कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूल कर आ गई, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते, बहू जापान गई थी तो वहां की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी बहुत

रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है, जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सैल्यूट करने लग जाते हैं, क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती हैं बॉबी फिल्म का ये आना, इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी। नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और बड़े फोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी मैं भी बहुत फैशनेबल रहे हैं। वो बड़े बाल बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे, गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मानकर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ, कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं। और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी, इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं, जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं, सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, उस जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियां पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जब ही मैट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है।

है जो देखते बनता है जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियां, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूंगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है, लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कंफर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद है, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में, वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहां बहुत सारी फोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिजाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिजाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे, क्योंकि वो डिजाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है, और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी, तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन हैं, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिज़ाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियाँ हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर

0: भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी।

0: 2810902 और चौथा नंबर है +9899321793599। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के

0: बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस विशेष समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी।
1: आज लगभग 262 लोग नियुक्त हुए हैं और इस बात को जरूर जहन में रखिएगा, जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है उसको हम ईमानदारी पूर्वक निभाने का हम प्रयास करें। मैं नहीं कहता किसी भी व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। सरकार आपसे काफी उम्मीद के साथ और जिम्मेवारी के साथ चलने को तैयार है।
0: झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में बीएलओ और सुपरवाइजरों को डिजिटल प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी समावेशी बनाने के लिए बीएलओ 2 की भूमिका अहम और अपेक्षित है।
2: पूरा झारखंड में सभी BLA2 राजनीतिक दल का द्वारा वो नियुक्ति किया हुआ पदाधिकारी उनका साथ में बैठक हो रही है। उसी बैठक में आपका वो आने वाली चल रही है वो SIR के बारे में उनका जानकारी दिया जा रहा है, साथ में उनका एक सहयोग भी मांगा जा रहा है ताकि एक भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं।
0: देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। नीति आयोग ने बताया कि इस वर्ष के चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। बहुचर्चित बोकारो ट्रेजरी घोटाला मामले में सीआईडी की विशेष अदालत ने आज 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने लेखा शाखा के SSI अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से साइबर अपराध में लिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन तथा 4 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। राज्य में आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। इसी कड़ी में पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में जिला बल और IRB के जवानों ने दंगारोधी उपकरणों के साथ विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास के दौरान भीड़ नियंत्रण, अश्रु गैस और वाटर कैनन के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और आम जनता के बीच विश्वास बहाली के लिए जिले के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की है।
3: मुहर्रम का पर्व है, पुलिस प्रशासन है शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। जो इंटरनल मोबिलाइजेशन है फोर्सेस का वो किया गया है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं असामाजिक तत्वों को कि यदि वो कानून को अपने हाथ में लेंगे तो हम लोग जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।
0: धनबाद में ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में धनबाद जिला ओलंपिक संघ द्वारा चलाए जा रहे साप्ताहिक वृक्षारोपण अभियान के तहत संजीवस इंटरनेशनल स्कूल परिसर में 1 दर्जन फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। विद्यालय के प्राचार्य इंद्रनाथ सिन्हा और संघ के महासचिव रंजीत केशरी ने छात्रों को पौधारोपण कर उनकी देखभाल का संकल्प दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ तथा झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के तहत आज बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम परिसर में खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कुल 96 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूँ आपके सामने।
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं, तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी, कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपने टिफिन।
2: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता है?
2: या फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है, उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
1: शान होते तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुकी होंगी
2: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
2: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
1: संयम
2: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
1: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहां कहां संयम खो दिया था
2: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
2: संयम टूट गया।
1: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
2: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है, और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती हैं उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें। संयम क्या है? संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
2: और कब कब खो दिया संयम,
1: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
2: भी
1: है ना।
2: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में।
1: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
2: बहुत नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
1: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना, तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
2: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इलकल साड़ी के।
1: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
2: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं, किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है।
1: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं। और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
2: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, अरे तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
1: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद।
2: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे लिखते हैं वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें, हाँ कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
2: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
1: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
2: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो
0: है।
1: हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर खरीदना
1: खरीदनी
0: है,
1: पड़ेगी है ना।
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है, हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: मांग
0: है।
1: हो गई है, बिल्कुल सही कहा। और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग
0: अलग
1: बनाती
0: बनाती
1: है।
0: है। और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल। और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो हैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं, और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है। और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण
0: बुनकर
1: तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके।
1: घर चल सके, उनको एक आजीविका का
0: जी
1: साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहां की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है। और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और से और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है, तो
1: हाँ
0: साड़ियों को पहनना भी उतना ही
1: जरूरी
0: जरूरी है
1: है
0: कि
1: बिल्कुल।
0: कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि भाई वक्त बहुत ज्यादा
1: ज्यादा
0: ऐसा है।
1: लगता है।
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन
1: तैयार।
0: के जा
1: और
0: सकते।
1: जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियां, यानी आप उसमें बिल्कुल सिर्फ
1: प्लेट्स जो हैं।
0: एक हुक लगाना है, और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतने
1: उतना ही
0: ही समय
1: समय
0: में
1: लगता
0: साड़ियां भी
1: है,
0: पहन
1: उसी
0: सकते
1: तरह से
0: हैं।
1: पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ
0: उसकी
1: और
0: बात
1: होता
0: कुछ और होती है ना।
1: है ना। चलिए तो गीत सुन ले।
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे हैं, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है
1: तो ऐसी
0: कि
1: जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने। और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं।
1: और बस मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
0: बिल्कुल, एक पन दो कार, है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं। और विचारों में आपने कहा अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती है। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है। तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है, वो हम बिल्कुल पूरे टाइम
0: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: बहुत
0: है,
1: बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा। हाँ। रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और ये ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे। हाँ, संयम से काम।
0: हाँ, वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किस से बात कर रहे हैं, क्यों

0: बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगा
1: इस्तेमाल
0: है।
1: होने लगता है, तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह की
0: जी,
1: भाषा
0: उससे
1: का।
0: आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: ये सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती कीमती संपत्ति है, इसको आप
1: जी
0: जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता
1: यानी
0: है।
1: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि
0: अरे
1: इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
0: लाइब्रेरी
1: उसने।
0: में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी
1: और
0: किताबें,
1: आज तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार
0: सब
1: खुला
0: कुछ
1: है।
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली, कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस
1: इसका
0: विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो
1: सब
0: उसका सदुपयोग करना
1: उसका हमें
0: चाहिए।
1: सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा, यानी जो जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें
0: हाँ,
1: अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए,
1: और
0: लगना
1: उसमें
0: चाहिए,
1: बहुत ज्यादा समय की बर्बादी ना
0: नहीं
1: हो।
0: करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक
0: अंतराल।
1: लेते हैं।
0: हाँ,

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है। मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है। ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखती है कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और

प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है, मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता

0: बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
1: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
0: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली, जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
0: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
1: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है, जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया, अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
0: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं, मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है, उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंग की वो डोर है जो उसे ऊंचाई तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
1: है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य, मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धि भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत ना हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा, और आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं, कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं।

0: आत्महत्या की ओर चले जा
1: जी
0: रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए,
1: कि
0: आज
1: इस
0: नहीं तो
1: साल
0: कल।
1: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी
0: जिंदगी
1: और इतना
0: खाली,
1: सुंदर जीवन है मिला
0: उसको
1: है
0: हम खत्म कर देते
1: जी।
0: हैं।
1: तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या
0: हाँ
1: 2-4 दिन बाद लाकर देंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो बचपन से ही उन्हें इस
0: ये
1: तरह से
0: संयम सिखाया जाए। और
1: जी
0: दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए, ना कि आप अपने जीवन को ही
1: समाप्त कर दे।
0: समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए, बोलने का
1: कि
0: एक
1: गाना
0: गाना सुनाना
1: सुना
0: चाहिए।
1: सुना।

0: मंदाकिनी जी, हमारे
1: जी
0: बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची एक पाउडर छोटा चम्मच, इसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे, इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खाया जा
1: खा
0: सकता
1: सकती हैं। इसका मतलब
0: है।
1: हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है
0: कुछ मुरब्बे
1: ना।
0: और
1: हाँ, ये
0: अचार
1: भी बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही
0: है
1: है
0: और
1: ना,
0: एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे
1: सुन रहे हैं, तो
0: हैं।
1: फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके
0: हाँ
1: बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे इनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गर्म किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघलकर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
0: मेरे तो मुंह में

0: नहीं आ गए, थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना ये
1: क्या
0: चाय।
1: बात है, तुमने
0: और
1: तो थेपली की भी
0: मुरब्बा
1: याद दिला दी है।
0: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है, तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं, और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची, फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोन ले ताकि चाशनी अंदर जा सके, हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें, चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं, जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें, ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरे, मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
1: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
0: और अब क्या करना है?
1: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
0: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिले में बीएलओ और सुपरवाइजरों को डिजिटल प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए बीएलओ 2 की भूमिका अहम और अपेक्षित है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में आज टाटा चाईबासा मुख्य मार्ग पर समाहरणालय मोड़ के पास सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि उनके रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गढ़वा जिले में अब तक सामान्य से कम वर्षा होने तथा लगातार भीषण गर्मी पड़ने से भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे जा चुका है। जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झार जल पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की और समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
1: संगीत सरिता
2: अभी भी आता है। उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अंजाम

0: आने ही बना।
1: जी। और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
0: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए
1: अच्छा
0: मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि
1: जी
0: चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद भी।
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
0: जी हाँ,
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को
0: जी जी
1: बताइए।
0: जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके
1: जी
0: लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है।
0: तो वो
1: तो
0: एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यहीं रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका
0: जी
1: हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
0: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले,
1: जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो
1: वाह।
0: बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी।

0: वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी।
1: वाह,
0: तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग
1: मंथन
0: को
1: करने
0: हिला
1: वाला है
0: देने
1: वो
0: वाला
1: पूरा
0: था,
1: पूरा।
0: और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा। और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ। मैंने उस वक्त फिर बनाया जो चित्र था, एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली, और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा। किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बढ़िया
0: मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले,
1: जी जी
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहाँ पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आपको करनी पड़ती
0: मैं
1: है?
0: तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपने जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में,
1: जी
0: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या
1: जी
0: उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं।
1: जी
0: तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है
1: जी
0: वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी।
0: है।
1: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और कृष्ण

0: कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे। तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए। और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं।
0: जी।
2: वो शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल

0: जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है।
1: मिलता है कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
0: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र
1: नहीं।
0: नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं और बदलते रहे हैं।
1: जी
0: और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था।
1: जी
0: अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और
1: क्या
0: वो एक
1: बात
0: बहुत
1: है।
0: बड़ी चुनौती भी था। किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हर ही रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला
1: ओ
0: रंग लगाना
1: हम
0: सबसे मुश्किल काम है।
1: अपने श्रोताओं को यहां बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग। जी आगे
0: हाँ, तो
1: बताएं।
0: मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए। तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है।
1: जी
0: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है
1: जी
0: लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही
1: फुर्सत
0: फुर्सत
1: की
0: के रात
1: रातें,
0: दिन।
1: मौसम फिल्म का गाना है,
0: जी हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।
0: दिल

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई, और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था, एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया, और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमेन शो था बम्बई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और

0: हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चर्चा हबीज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी देविदा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
1: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
0: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने, और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ, तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे, तो वो हो नहीं सकी। और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया, तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए। और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे,
1: जी,
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे, और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो
0: मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग, और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है, जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीवी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उन को बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वॉज ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी,
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है, तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पर जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ, ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त, वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली,
0: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
1: हाँ।
0: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब, और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
1: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे

0: मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी,
1: जी
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे
1: जी
0: लिख। तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन,
0: मेरे
1: दोनों?
0: लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना
1: जी
0: तो कभी कभार है,
1: कभी
0: मतलब
1: कभार
0: मैंने
1: के
0: हाँ ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, सिक्स हु डिक्लाइन ट्रिनाले, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है
1: जी
0: कैंसल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था तो मैं तो सबसे जूनियर था
1: जी जी
0: तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए।
1: जी
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ
0: बहुत ही
1: होगा
0: आश्चर्य
1: जैसे.
0: था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूं, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी
1: जी
0: भीड़
1: जी
0: थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना
1: बिल्कुल
0: उड़ती सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी
1: जी
0: क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके
1: जी
0: हैं।
1: यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस
0: इस
1: बात का
0: बात का
1: वादा
0: वादा
1: कर
0: कर
1: लो,
0: लूँ
1: सुनते हैं ये गाना.
0: जी।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं।
0: जी।
1: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक होकर के एक अच्छा चित्रकार जो है वो

0: वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज़ समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियाँ हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो,
1: जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं हैं। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि
1: जी
0: मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं,
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल
0: मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो
1: जी
0: ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग-अलग संस्कृति और अलग-अलग विचार और अलग-अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा,
1: जी, सुनते हैं
0: ये
1: ये
0: वाला
1: गाना।
0: सुनता
1: वो है

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं, और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं, और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है, और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी,
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का, 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है, और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया है,
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा
1: ये
0: बताइए।
1: बहुत ही ज़रूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं, और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। दादा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी, अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है, ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं, और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर
0: निर्भर
1: करता
0: करता
1: है
0: है।
1: कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं, और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया, तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं, तो आप अगर उनका पीछा करने लगते

0: हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते।
1: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है
0: वो
1: जी। इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में मेडिकल सीट अलॉटमेंट और नामांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितता मामले में अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी की टीम ने आज रिम्स में डीन कार्यालय समेत विभिन्न विभागों में उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच शुरू की। सीआईडी अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पिछले शैक्षणिक सत्र में हुए दाखिलों से संबंधित शिकायतों के आधार पर की जा रही है। मुहर्रम के मौके पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बोकारो जिले के सभी थानों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में माराफारी थाना क्षेत्र के जुलूस मार्गों का सत्यापन ड्रोन के माध्यम से करते हुए ऊंची ऊंची इमारतों का निरीक्षण किया गया। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज बोकारो समाहरणालय परिसर से सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद के तहत बैटरी चालित ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के चयनित 16 दिव्यांग लाभुकों के बीच बैटरी चालित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने करवाटांड थाना क्षेत्र से साइबर अपराध में लिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 4 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उनकी प्यार भरी निगाहों ने फूलों की बारिश की, अधरों ने लिख दी जिंदगी की नई वसीयत, और फिर जिंदगी ख्वाब बन गई।

जब जिंदगी की रफ्तार में इंसान खुद को दौड़ता हुआ रोबोट बना लेता है, जब इंसान महज लफ्ज का जादूगर हो जाता है, जब इंसान में जज्बात नहीं रह जाते, तो वो इंसान नहीं बल्कि एक पुर्जा में तब्दील हो जाता है। जिंदगी में धूप, बारिश, नमी, बादल का एहसास बना रहे, इसलिए वक्त निकालकर खुद से गुफ्तगू बहुत जरूरी है।

हंसने की चाहत कई बार जिंदगी को आंसुओं का सैलाब बना देती है। आंखों की नदी को मुस्कुराहट से ढक लेते हैं हम। दिल में खामोशियों का जहां होता है, चेहरा यूं ही कुछ बोलता रहता है, क्योंकि बोलना इंसान की फितरत है। भीड़ में रहते हुए भी हम एकाकी होते हैं, हंसने की चाहत में हम आंखों में नदी भर लेते हैं।

हमदर्द, हम साया, हम सफर का जुदा होना, जिंदगी जैसे अंधेरे से घिर जाती है। जाने वाला चला जाता है दूर, कहीं दूर, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाए रखता है कि शायद वो आएगा। टूट कर भी जीने का हौसला पा लेता है दिल। कुछ अजीब है ये दिल, अजीब है ये जिंदगी।

वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें मिलती है सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत कभी स्वीकारोक्ति की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत में जलकर भी अपनी और उसकी राहें रोशन कर लेते हैं। हर किसी के हिस्से में नहीं आती सच्ची मोहब्बत। कुछ लोग मोहब्बत की राहों में चलते हुए भटक जाते हैं। वे नहीं समझ पाते मोहब्बत की गहराई। ऐसे में तन्हाई मुस्कान बनकर उनका साथ निभाती है।

हमारे मन में यादों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी यादें, कुछ खुशगवार यादें। कुछ दर्द भरी यादों की लहरों से हमारा मन चोटिल होता रहता है, कुछ दर्दीली यादें हमें सहलाती भी हैं, हमें सिखाती भी हैं, कुछ प्यारी यादें हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में श्रोताओं आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

शाम 5:35 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आज चर्चा होगी स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को लाभ। साथ ही चर्चा में सुनेंगे विलंब से विवाह जिम्मेदार कौन। वार्ता में सुनेंगे वालिका शिक्षा पर वार्ताकार होंगी पूजा गुप्ता। 6:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम सुनेंगे खेती बाड़ी। खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा होगी खेतों को परती ना छोड़े किसान। साथ ही चर्चा में सुनेंगे मोटे अनाजों की खेती की तैयारी। भेंटवार्ता में सुनेंगे कृषि वानिकी का महत्व और भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अनिल कुमार। भेंटकर्ता होंगे संतोष कुमार। 6:30 पर कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण सभा। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मशरूम उत्पादन से सशक्तिकरण और आज की बात में सुनेंगे कुटीर उद्योग में रोजगार। भेंटवार्ता में सुनेंगे मृदा परीक्षण एवं इसका महत्व। भेंटवार्ताकार होंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

सात बजे का समय होगा। प्रादेशिक समाचार का 7:10 पर जिले में आजकल आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 7:15 पर मुहर्रम के अवसर पर मनकतब की प्रस्तुति होगी कयूम रुमानी की। 7:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे एक रंग। कल्याणी कार्यक्रम का समय होगा 7:45। इसके अंतर्गत भेंटवार्ता सुनाई जाएगी। शीर्षक होगा दांतों की आम समस्या एवं देखभाल। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अब्दुल जफर और भेंटकर्ता होंगे श्री संजीव कुमार लाल। 8:00 आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

रात्रि के 8:45 पर आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में समाचार सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, 9:30 पर आज के फनकार आप सुन सकेंगे विविध भारती से, और 10 बजे हम अपने स्टूडियो में आएंगे वापस कार्यक्रम रजनीगंधा को लेकर। रात्रि के 11 बजे का समय होगा हिंदी में समाचार का और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का। हमेशा की तरह रात्रि के 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। नीचे प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। बहनों आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक खूबसूरत नगमे के साथ।

बहनों, आज हम बातें करेंगे स्वयं सहायता समूह से। आज हमारी जो बहनें हैं वो किस प्रकार से इसका लाभ ले रही हैं और उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया है। तो यदि हम बातें करें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, तो स्वयं सहायता समूह जो है वो एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। या छोटे छोटे समूह होते हैं जिनमें लगभग 10 से 20 महिलाएं जुड़ी होती हैं और ये सब मिलकर बचत करती हैं, आपस में सहयोग करती हैं और छोटे मोटे व्यवसाय को शुरू करती हैं ताकि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में वो आगे बढ़ सके। स्वयं सहायता समूह का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महिलाएं हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करती हैं और इस बचत के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त भी कर सकती हैं। ऋण लेकर महिलाएं अपने क्षमता के अनुसार या अपनी रुचि के अनुसार या अपने क्षेत्र के अनुसार कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकती है। हम जैसे बातें करें बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, सिलाई कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, सब्जी की खेती करना इत्यादि इत्यादि छोटे मोटे व्यवसाय जो है वो मिलजुल कर आपस में शुरू करती हैं। और आज देखा जाए तो हर गांव में या शहर हो, सभी जगह महिलाएं अपने छोटे छोटे समूह बनाती हैं और हर जो समूह है आज अपने स्तर से काम कर रही हैं और उसमें महिलाएं जो हैं अपने आप को स्वावलंबी बना रही हैं और इसका लाभ भी ले रही है। पहले तो महिलाएं जो घर की चार दीवारी तक ही सीमित होती थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं बैठकों में भी भाग लेती हैं, आपस में मिलती जुलती हैं तो वे निर्णय लेना सीखती हैं, आपस में उनमें सहयोग की भावना आती है। और साथ ही यदि वो 10-20 महिलाओं के बीच में बैठती हैं तो बहुत प्रकार के ज्ञान का भी आदान प्रदान होता है, जिससे कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और समाज में अपनी एक पहचान भी बना पाती हैं। इतना ही नहीं, इस समूह से जुड़कर महिलाएं जो हैं वो शिक्षा के महत्व को भी समझ रही हैं और इतना ही नहीं, वो स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हो रही हैं। यानी यदि वो घर से बाहर निकलती है तो बहुत प्रकार के अनुभव से होकर वो गुजरती हैं और जिसमें उन्हें तब समझ में आता है कि स्वच्छता किस प्रकार से उनके घरों के लिए, पर्यावरण के लिए, सेहत के लिए ज़रूरी है।

तो एक तरह से देखा जाए तो उनमें जागरूकता आती है, जागरूकता आती है कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा जैसी सामाजिक बुराइयाँ जो हैं वो ये जो कुरीतियाँ हैं, ये जो वर्षों से चली आ रही हैं उसके विरुद्ध वो आवाज़ भी उठा सकती हैं। तो ये सब संभव हो पाता है लोगों के बीच बैठने से और अपने विचारों को विचार विमर्श करने से। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह से कई और अन्य प्रकार के रोज़गार भी इसके अवसर होते हैं, जिससे महिलाएं जुड़कर अपने नए अवसर से जुड़कर अपने आप को स्वावलंबी बना सकती हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिनमें बहुत सारी हुनर होती हैं और उन हुनर का प्रयोग करके भी वो इन व्यवसाय को आगे बढ़ाती हैं। अब यदि हम बोले पापड़ हो गए, अचार बनाना हो गया, मुरब्बा बनाना हो गया, या फिर अगरबत्ती बनाना इत्यादि इत्यादि, या हस्तशिल्प से संबंधित जो भी उनमें जो भी गुण है या क्षमता है वो सभी इसमें अपना प्रयोग कर सकती हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो परिवार और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ता है और घर के निर्णय लेने में भी उनकी जो भागीदारी है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी अधिक भलीभांति प्रकार से सोच सकती है, जैसे उनकी शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उनके कैरियर के बारे में, उनके शादी ब्याह के बारे में भी वो अपना निर्णय ले सकती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महिलाओं के जीवन में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर काफ़ी बदलाव आया है और अपने को स्वावलंबी तो बना ही रही हैं, और यदि स्वावलंबी बन रही हैं तो उनमें एक विश्वास जगता है, आत्मनिर्भर बनती हैं तो निश्चय ही उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास बढ़ता है तो फिर बहुत सारी उनमें जो भी कमियां रहती हैं वो सब अपने आप दूर होती जाती हैं। ज़रूर जुड़ना चाहिए महिलाओं के इस समूह से, जो भी महिलाएँ जुड़ना चाहती हैं और इसका लाभ ले सकती हैं। तो चलिए बहनों, अब इसके बाद हम बातें आपको सुनाएंगे एक वार्ता। भेंट वार्ता में आप सुनेंगे कृषि वानिकी का महत्व। भेंट वार्ताकार होंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।

0: माफ़ कीजिएगा बहनों, अभी हम आपको सुनवाएंगे वार्ता बाली का शिक्षा, जिसमें वार्ताकार होंगी पूजा गुप्ता। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार श्रोतागण, आज हम बात करेंगे बालिका शिक्षा, जो सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के विषय की बुनियाद है। उस पर आज अपने विचार साझा करने जा रही हूँ, और चूंकि मैं स्वयं एक लड़की हूँ, इसलिए यह विषय मेरे लिए केवल एक औपचारिक चर्चा नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव वाला विषय है। मेरी अपनी यात्रा में भी मैंने देखा है और यह महसूस किया है कि शिक्षा एक लड़की की जीवन को कैसे संवार सकती है, उसे आत्मनिर्भर बना सकती है और उसकी पहचान को आकार देती है। श्रोताओं, आपने सुना होगा, एक शिक्षित पुरुष एक व्यक्ति को शिक्षित करता है, लेकिन एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित करती है और नई दिशा दे सकती है। तो सोचिए, अगर हर लड़की को शिक्षा मिले तो हमारा समाज कितना उज्ज्वल हो सकता है। शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो किसी भी प्रकार के लिंग भेद से परे होना चाहिए। पुरुष और महिला समाज रूपी जीवन के दो आवश्यक पहिए हैं, जिनका समान रूप से सशक्त होना और शिक्षित होना किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। जब दोनों बराबरी से आगे बढ़ेंगे, तभी समाज संतुलित और सफल बन सकेगा। इसलिए उन्हें समान अवसरों की आवश्यकता है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं देती बल्कि सोचने, समझने, निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने की शक्ति भी देती है। बालिका शिक्षा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षित लड़की अधिक उत्पादक, सक्षम और विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली बनती है।

0: बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे देश के कई हिस्सों, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, वह भी इस आधुनिक और तकनीकी युग में। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में लड़कियां अब भी असमानता और भेदभाव का सामना कर रही हैं। शिक्षा जो किसी भी लड़की के समृद्धि, आत्मनिर्भरता और विकास का सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है, उसे ही उससे दूर कर दिया जाता है। आज भी अनेक परिवारों में बेटियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता और उन्हें अक्सर घर के कामकाज, बाल विवाह या भाई की पढ़ाई के लिए पीछे कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या केवल बेटा ही भविष्य है? क्या बेटी के सपनों की कोई कीमत नहीं है? अगर नहीं, तो फिर हमें यह स्वीकार करना होगा कि समाज की सच्ची प्रगति तभी संभव है जब बेटियों को भी वह शिक्षा, वह अवसर और वह सम्मान मिले जिसकी वह हकदार हैं। भारत जैसे विकासशील देश में यदि हम सच्चे अर्थों में प्रगति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें समाज की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को शिक्षित करना होगा और इसकी ठोस शुरुआत बालिका शिक्षा से ही संभव है। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं, तो उन्हें शिक्षा से वंचित रखना क्या पूरे देश की प्रगति को रोकना नहीं है? जब हम लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं देते, तो हम सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि पूरे समाज की क्षमता को सीमित कर देते हैं। साक्षरता दर केवल कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, इसका आंकड़ा नहीं है। यह एक देश की जागरूकता, उसकी संभावनाओं और उसके भविष्य की दिशा दर्शाता है। अगर हम आधी आबादी को ही निरक्षर रखेंगे, तो साक्षरता दर कैसे बढ़ेगी? विकास की रफ्तार कैसे तेज होगी? एक शिक्षित महिला न केवल आत्मनिर्भर बनती है बल्कि अपने परिवार की आय में योगदान देती है, बेहतर निर्णय लेती है और अगली पीढ़ी को भी शिक्षित करती है। जब लड़कियों को शिक्षा मिलेगी, तो उन्हें बोझ नहीं भविष्य की शक्ति माना जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप गरीबी में भी कमी आएगी, शिशु मृत्यु दर घटेगी और एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। इसलिए बालिका शिक्षा केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। श्रोताओं, लड़कियों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है गरीबी। भले ही आज शिक्षा के साधन पहले से अधिक सुलभ हो गए हों, लेकिन कई परिवारों में के लिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, स्टेशनरी और आने जाने का खर्च, यह सब कुछ परिवारों के लिए एक बड़ा बोझ होता है जो दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब कोई माता पिता खुद भूखे पेट सोने को मजबूर हों, तो उनसे यह उम्मीद करना कि वे अपनी बेटी को स्कूल भेजें कहीं ना कहीं एक कठोर मांग लगती है। लेकिन दोस्तों, यही वह चक्र है जिसे तोड़ना होगा और यह उसका एकमात्र रास्ता है, शिक्षा। इसके अलावा बाल विवाह भी बालिका शिक्षा में गिरावट का एक अहम कारण है। आज भी कई इलाकों में लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। शादी से पहले ही उन्हें स्कूल से निकाल लिया जाता है, यह सोचकर कि अब पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। समाज में आज भी यह मानसिकता बनी हुई है कि लड़की का स्थान रसोई तक सीमित है और उसका काम सिर्फ घर संभालना है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अगर एक लड़की पढ़ लिख जाए, तो वह न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनती है बल्कि अपने पति का आर्थिक बोझ भी साझा करती है। इससे घर की आमदनी बढ़ती है, जीवन स्तर सुधरता है और गरीबी की जंजीरें टूटती हैं। सकारात्मक बात यह है कि सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई प्रभावी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, माध्यमिक शिक्षा बालिका प्रोत्साहन योजना। ये योजनाएं इसी सोच की उपज है कि हर बेटी को जन्म से लेकर शिक्षा तक संपूर्ण संरक्षण और अवसर मिले। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने भी कई उपयोगी सुझाव दिए हैं, जैसे मौजूदा स्कूलों के ढांचे को बेहतर बनाना, लड़कों के स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग सेक्शन की व्यवस्था करना और शिक्षा को अधिक सुलभ व आकर्षक बनाना। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्कूलों में निशुल्क मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य जांच और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि गरीब परिवारों की बेटियां भी स्कूल तक पहुंच सके। सरकार न केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि उन सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त करने के लिए सक्रिय है जो बालिकाओं के विकास में बाधक बनती हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम इसी दिशा में एक अहम कदम है। यह कानून स्पष्ट रूप से बाल विवाह को अपराध घोषित करता है और यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही भारत सरकार ने संकट में फंसे बच्चों की मदद के लिए चाइल्डलाइन नामक 24/7 टोल फ्री आपातकालीन सेवा शुरू की है, ताकि कोई भी बच्चा, विशेषकर बालिकाएं, संकट की स्थिति में तुरंत सहायता पा सके। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी इसी दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह आयोग बाल विवाह और बालिका शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम, निगरानी और हस्तक्षेप जैसे कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक ही है कि कोई भी लड़की केवल इसलिए शिक्षा से वंचित ना रहे क्योंकि वह एक बेटी है। लेकिन दोस्तों, यह बदलाव केवल सरकार की योजनाओं से संभव नहीं होगा। यह जिम्मेदारी हम सबकी है, हमारी, आपकी, मेरी, पूरे समाज की है। हमें वह माहौल बनाना होगा जहां हर बेटी बिना किसी डर और भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर हम वास्तव में बालिका शिक्षा को आंदोलन बनाना चाहते हैं तो आइए कुछ संकल्प लें। हमें हर गांव, हर मोहल्ले में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लड़की स्कूल से वंचित ना रह जाए। हमें हर माता पिता को यह जागरूक करना होगा कि बेटी भी बेटा समान है, योग्य है, सक्षम और सपनों की हकदार है। स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय, सैनिटरी सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध हमें सभी को एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। हमें इस सत्य को समझना होगा कि लड़कियों की शिक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि समाज के उज्जवल भविष्य की नींव है। एक शिक्षित लड़की सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बदलती, वह एक परिवार, एक पीढ़ी और अंततः पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। वह अपने बच्चों की पहली शिक्षिका बनती है, उन्हें संस्कार देती है, सोचने की आज़ादी देती है। लड़कियों को शिक्षित करना कोई बोझ नहीं है, यह सबसे मूल्यवान निवेश है जो आने वाले कल को सुरक्षित करता है। जैसे जैसे एक महिला आगे बढ़ती है, उसका परिवार, समाज और राष्ट्र भी साथ साथ प्रगति करता है। श्रोताओं, मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसी प्रेरणादायक महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत अब करने जा रही हूँ, जिन्होंने शिक्षा के बल पर अपने जीवन को नई दिशा दी और समाज के लिए मिसाल बन गए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। इन्होंने अपनी शिक्षा के बल पर राजनीति में प्रवेश किया और पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि एक महिला भी देश का नेतृत्व दृढ़ता और कुशलता से कर सकती है। वहीं दूसरी हैं कल्पना चावला। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। वे भारत की पहले महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और आज लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर किरण बेदी को हम कैसे भूल सकते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। उन्होंने न केवल कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अपने साहस और ईमानदारी से पहचान बनाई, बल्कि पूरे देश की लड़कियों को यह विश्वास दिलाया कि वे किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकती हैं। और आज हम गर्व से देखते हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी ने शिक्षा को अपना सहारा बनाया और समाज में नई ऊंचाइयां हासिल की। दोस्तों, इन सभी महिलाओं में एक बात समान थी, वह
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी पूजा गुप्ता को, शीर्षक था बालिका शिक्षा। और इसी वार्ता के साथ बहनों, अब हमें दे इजाजत कार्यक्रम घर आंगन से। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज के बरहड़वा और गुड्डा के आदिवासी बहुल सुंदर पहाड़ी प्रखंड में मान्यता प्राप्त दलों के BLA-2 प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड में रह रहे विदेशी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार नहीं है और इन्यूमरेशन फॉर्म पर नागरिकता की गलत घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। बोकारो जिले में पुलिस एवं झारखंड अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने बोकारो स्टील सिटी स्थित कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट सह औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोचिंग संस्थानों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास द्वार, अग्निशमन मानकों का अनुपालन, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और आपदा की स्थिति में निकासी व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरु थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने आज सारंडा के टटीबा गांव के पास जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में संचालित 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों को नष्ट किया गया। गढ़वा जिले में आज विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों द्वारा गंगा दशहरा मनाया गया। सबसे अधिक कार्यक्रम गायत्री परिवार द्वारा सभी शक्तिपीठों और प्रखंड मुख्यालय केंद्रों पर आज सुबह हवन यज्ञ और मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बारी।

खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोता आज के इस कार्यक्रम में। श्रोता, जून का महीना बीतने को है और हमारे किसान भाई नजरें टिकाए हैं आसमान पर कि कब बारिश हो और धरती की प्यास बुझे। धरती की प्यास बुझेगी तभी किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर पाएंगे। हमारे किसान भाई पूर्णतः निर्भर है मानसून पर और बदलते जलवायु के कारण मानसून भी अनिश्चित है। कभी समय से आगे, कभी पीछे या कभी ना के बराबर बारिश होती है और इसका सीधा असर पड़ता है खेतीबाड़ी पर। और यदि खेतीबाड़ी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तब इसका प्रभाव ना सिर्फ कृषकों के जीवन पर पड़ता है बल्कि इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्रोताओं, मौसम के अनिश्चितता को देखते हुए हमारे किसान भाई को अपने खेती कार्य में या कृषि कार्य में बदलाव लाने की आवश्यकता है। यानी समय

0: और मांग और मौसम के अनुरूप उन्हें कृषि कार्य करनी चाहिए। यदि हम बातें करें मोटे अनाजों की, तो आज समय की मांग है कि किसान भाई मुख्य खाद्यान्न की जगह मोटे अनाज की खेती करें, क्योंकि इस मोटे अनाज की खेती करना उनके लिए कई मायने में लाभदायक सिद्ध होती है। तो चलिए कैसे बातें हम करते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो ये देखते हैं श्रोताओं कि मोटे अनाज वे अनाज हैं जिनके उत्पादन में किसान भाइयों को ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से उग आते हैं, यानी जहाँ पानी की सिंचाई के साधन ना भी हो वहाँ भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। धान और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज के उत्पादन में पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और इसकी खेती में दूसरे रासायनिक खादों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी देखिए हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं वे बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वे धान के जो मुख्य फसल धान है उसकी बुआई शुरू करें, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। और अभी तक यदि हमारे किसान भाई हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें मौसम पर निर्भर नहीं रहने चाहिए, बल्कि उसके बदले में वे कम बारिश वाले जो भी अनाज हैं वो कम जिनमें सिंचाई की आवश्यकता हो, कम पानी की आवश्यकता है, वैसे अनाजों की खेती यानी मोटे अनाजों की खेती करके भी वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनकी भी जो मांग है वो बाज़ारों में दिनों दिन बढ़ते जा रही है। और देखा जाए तो मोटे अनाज जो है वो शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और आज तो सरकार भी मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि हमारे किसान भाइयों को कोई भी किसी भी प्रकार की उन्हें हानि ना उठाना पड़े, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनी रहे और वे स्वस्थ भी रहें। इसीलिए मोटे अनाजों की खेती के लिए बराबर उन्हें जोर दिया जा रहा है। और मोटे अनाज जो हैं श्रोताओं, जैसा कि हमने कहा कि इसके उत्पादन में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें पानी की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है और ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता। और इसमें यदि रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है तो किसानों को खेती में लागत में भी कमी आती है। और मोटे अनाज का सेवन करना आज कई तरह के रोग जो हैं वो अपने आप ठीक हो जाती है। जी हाँ श्रोताओं, यदि हम बातें करें मोटे अनाज की तो इतने ज़्यादा वे पौष्टिक हैं कि यदि हम इनका नियमित सेवन करते हैं तो खुद ब खुद बहुत सारे जो आज भयंकर बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ हो गए या फिर मोटापे हो गए या फिर लीवर की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, इन सबों से निजात पाई जा सकती है यदि हम मोटे अनाजों का नियमित सेवन करते हैं तो। और इसके लिए आज किसान भी मोटे अनाज के लिए हमारी जो सरकार है वो बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन हमारे किसानों को भी जागरूक होना होगा जिससे कि उन्हें कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल पाए। और खरीफ के सीजन में अधिकतर किसान जो धान की खेती करते हैं वे अब मोटे अनाज की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि मोटे अनाज में भी जो है उन्हें अच्छे आमदनी प्राप्त हो रही है। बहुत सारे हमारे किसान अब जागरूक हो रहे हैं और उनकी रुझान जो है इस ओर हो रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि हमारे किसान भाई जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र है उसमें भी इसे आसानी से इन अनाजों की खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती करने में 80 से 120 दिन में ये तैयार हो जाते हैं जो धान की फसल की तुलना में बेहद कम है। और बदलते दौर के साथ ही मोटे अनाजों की मांग भी बढ़ती जा रही है और जिससे कि उन्हें इसके अच्छे मुँहमांगी कीमत भी उन्हें मिल जाती है। ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, कुटकी, चना मुख्य जो है मोटे अनाज में आते हैं जो पोषण पौष्टिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें अपार पौष्टिक गुण होते हैं। और यदि हम बातें करें कि मिट्टी में यदि ये इनकी खेती की जाती है जिस भूमि पे, तो वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। तो मोटे अनाज की खेती करना हमारे किसान भाइयों के लिए एक नहीं कई प्रकार से लाभदायक है, और इसके लिए उन्हें अपने पशुओं के लिए चारा भी मिल जाता है। मोटे अनाजों की खेती जैसे मक्का हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, तो इनकी खेती करने से जो उनके भूसे निकलते हैं वो पशुओं के लिए आहार के रूप में भी उन्हें मिल जाते हैं। और यदि हम बातें करें कि हमारे किसान भाई आज जो तेज़ी से मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है और दिनों दिन हमारे किसानों के सामने चुनौती बनते जा रही है, खेती करना समय पर बारिश ना होना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई मॉनसून पर निर्भर ना रहें, बल्कि वे अलग हटकर इन मोटे अनाजों की खेती करें। उससे पर्यावरण दृष्टिकोण से भी बेहतर है और उनके मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति वो भी बढ़ती है, और साथ ही साथ यदि सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, किसानों के लिए भी और जो इसके नियमित भोजन में शामिल करते हैं जो व्यक्ति, उनके लिए भी। तो हर हाल में आज मोटे अनाज की खेती करना लाभदायक हो रहा है, और इसे हमारे किसान भाइयों को ज़रूर मोटे अनाज की खेती करनी चाहिए अपने खेतों में। तो चलिए श्रोताओं, अब हम इस जानकारी के बाद आपको सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता कृषि वानिकी के महत्व पर, जिस पर विशेष जानकारी देंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज वनों की अंधाधुंध कटाई से हमारी कृषि पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण बहुत सारी हानियाँ हमारे सामने आ रही हैं। वनों का संरक्षण नितांत आवश्यक है। जी हाँ किसान भाई, और कृषि वानिकी को हम अपनी खेती बाड़ी के साथ लेकर कैसे चलें जिससे हमें पर्यावरण प्रदूषण होने से भी हम बचा सकें और हमारी खेती भी फले फूले। आज कृषि वानिकी से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वानिकी विभाग के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। सर का स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। प्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि कृषि वानिकी क्या है।
2: किसान भाई, जहाँ तक कृषि वानिकी एक विषय आपको नया सा लग रहा है, लेकिन ये कोई नया विषय नहीं है। इसकी एक समुचित व्यवस्थित जो विज्ञान का रूप दिया गया है कृषि वानिकी, तो वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्रीज का आपको खेती में समावेशित करना, तो यही है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का मतलब होता है कि जो परंपरागत वन भूमि है उसमें, उससे हट करके जो हम खेती कर रहे हैं, जो खेती योग्य भूमि है उस पर हम वनों को कैसे हम समायोजित करके स्थान, जैसे स्पेस और टाइम, आपको दोनों का मतलब इसमें प्रबंधन का बेहतरीन तौर तरीके मतलब कि सुझाव का सुझाव है इसमें, और समावेश भी किया गया है। साथ साथ ये पर्यावरण तथा इससे होने वाले आर्थिक लाभ, ये दोनों का बहुत ही अच्छा सामंजस्य इसमें रखा गया है।
1: जी, अब प्रश्न उठता है कि कृषि वानिकी के तहत हम किस पौधों का रोपण करें, कैसे हम कृषि वानिकी को खेती में समावेश करें।
2: किसान भाई, इसमें वन रोपण, खास करके पौधे को अपने जमीन, कृषि की योग्य भूमि पर लगाना, ये तो बड़ी संशय की बात है। लेकिन वनों की महत्ता, वनों की सीधे महत्व क्या है, उससे होने वाली हमारे कास्ट का जो लकड़ी प्राप्त होना, इमारती लकड़ी प्राप्त होना, जलावन की लकड़ी प्राप्त होना, साथ साथ चारा का जो उपलब्ध कराने वाला जो वन वृक्ष है उसको समाहित करना, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको फर्टिलाइजर प्लांट कहा जाता है, जैसे आपका शेषवैनिया, जो खास करके जिसका मतलब कि फूल मार्केट में 100-150 रुपये के जी तक मतलब बिकता है। हाँ, तो ऐसे अगर हम मतलब कि सीजनल, जो इसका आयु 4, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक मतलब रख सकते हैं खेतों पे, इसके पत्तियों से आपको मतलब कि खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, साथ साथ इससे प्रत्येक पेड़ से 10 से 12 केजी तक इसका फूल जो बाज़ार में बहुत कीमती, मतलब कि 100-150 रुपए किलो इसको बिकता ही है, तो ऐसे मतलब कि वन वृक्षों को समाहित करके, समावेशित करके

0: आप कृषि की का जो खासकर के इसके अंतराल जहाँ तक बोले कि इसके अंतराल, तो मैं इसको बहुत सघन वनरोपण नहीं करूँगा, इसके 8-10 मीटर का जो अंतराल खेतों में रख करके, जिससे आपका हल ट्रैक्टर वगैरह आसानी से घूम सके, और 2 कतार बीच में लगाएंगे, फिर 8 मीटर लगाएंगे, फिर 2 कतार या 1 कतार, जैसे मतलब कि आपकी सुविधा हो, लेकिन इसका रोपण पूरब से पश्चिम दिशा में करेंगे। ये वैसे भूमि का चयन करेंगे जो आपका कृषि लागत के अनुरूप आपका उससे आपका लाभ नहीं मिल रहा है, तो वैसे भूमि का चयन करें, ऊपरी भूमि का अपलैंड्स का चयन करें। अगर ऐसे पद्धति आप 4-5 साल खेतों पर रखते हैं, 7-8 साल, तो खेतों की जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी।
1: अब प्रश्न उठता है कि इसको हमारे किसान भाई लगाएंगे कैसे?
0: हाँ, इसको लगाने का बात है किसान भाई, जिसकी मैं हल्की सी चर्चा पहले ही कर दिया। तो इसमें लगाने का क्या है कि जैसे इसमें लगाने के लिए काष्ठीय लगाना चाहते हैं, तो उसमें सागवान, पलामू की भूमि में खास करके पलामू, गढ़वा, लातेहार, ऐसे मतलब क्षेत्रों के लिए आपका सागवान जो है काफ़ी किसानों का पसंदीदा मतलब पौधा है। तो इसको 2-2 मीटर है ना, पौधे से पौधे का जो कतार 2-2 मीटर, यानी कि 7.5 फीट, लगभग 7.25 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आप मतलब रख करके, और जो पौधों का चुनाव करेंगे इसमें बराबर बराबर ऊंचाई, बराबर मोटाई का जो जो सीडलिंग का पौधा नर्सरी से चयनित करके लगाएंगे, और 2-2 मीटर अंतराल पर लगाना है। 3 साल बेहतर इसका देखभाल करिए, इसके बाद आपको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। हर दूसरे साल जो ऊपरी जो पत्ते हैं उसका 1/3 भाग हर दूसरे साल नीचे से तेज धारदार चाकू से या कुछ ऐसे तेज धार हथियार सिकाइटियर वगैरह से आप उसकी शाखाओं को काटते रहें, जिससे कि कृषि फसलें जो 8-7 मीटर का जो स्पेस दे रहे हैं 2 कतार के बीच, उसमें जो कृषि फसल लगा रहे हैं उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पेड़ का नहीं पड़े। इसलिए इसको कतार की जो पौधे से पौधे की दूरी जो रखेंगे 2 मीटर, और कतार से कतार की दूरी जो है रखेंगे 7-8-9 मीटर 10 मीटर तक रख सकते, जिससे आप 10-12 साल तक आपको बड़े मज़े से मतलब कि इसके जो 12 मीटर 8 मीटर 7 मीटर 9 मीटर जो भी रखते हैं सुविधाजनक, उस स्पेस में आप खेती कर सकें। आप ट्रैक्टर भी घूम जाएगा, हल भी चलेगा बढ़िया से। तो किसान भाई, इसको जहाँ तक मतलब कि सवाल है आपका चारा का फसल का, तो चारे के फसलों को मैं सुझाव देता हूँ कि वो आपका पगडंडियों पर लगाए, वो खेत में समाहित न करें, पगडंडियों के चारों तरफ मतलब लगा दें। प्रत्येक साल उससे मतलब कि पत्ते काट करके, जब आपके हरी घास कहीं ना मिले तब इसके हरे पत्ते को अपने जानवर, बकरियों, बैल, भैंस, गाय सभी को मतलब कि आप खिला सकते हैं।
1: तो इसका मतलब है कि हमारे किसान भाई लोग ये जो काष्ठीय वृक्ष जो लगाएंगे, साथ साथ में अंतर्वर्ती खेती भी कर सकते हैं
0: बहुत अच्छा से। और अगर ऐसा करेंगे और इसे अगर कुल लाभ देखा जाए, तो आपको जो सोल खेती जो एकल फसल लेते हैं साल में, उससे आपको कम से कम 2-2.5 गुना मतलब की फायदा आपको मिलेगा। अगर इसके सभी अभियव का कीमत अगर आंकते हैं, तब निश्चित तौर पर इसे जो एकल खेती करते हैं उससे आपको कृषि वानिकी पद्धति से जो आय होगी वो निश्चित तौर पर ज्यादा होगी।
1: अच्छा, आपने पलामू के कई गांवों का भ्रमण किया है, आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष लगाए जा सकते हैं काष्ठिया में। एक तो सागवान की बात हमने की, और कौन कौन से वृक्ष लगाए जा सकते हैं
0: पलामू की? खासकर के किसान भाई, जो जलवायु है वो थोड़ा शुष्क टाइप का है, यहाँ 7-8 महीने जो है शुष्क टाइप का जलवायु रहता है, ये स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में हमारे मतलब खासकर के ऐसे भूभाग में सागवान का पौधा चयन करें, बढ़िया। और दूसरा है, यहाँ खैर बहुत अच्छा होता है बगैर कोई विशेष परेशानी का, तो खैर के पौधा वो भी इकोनॉमिकल पौधा है, उसका अगर 18-20 साल 22 साल अगर खेतों में रह गया तो प्रत्येक पौधा से 1,000 रुपया 1,500 रुपया 2,000 रुपये आपको उसे कत्था के रूप में मतलब कि जो है एक्सट्रैक्शन अगर बड़े पैमाने पर किसान सामूहिक रूप से करते हैं तो इसको बेच करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है बाँस का खेती भी मतलब कि करें, और जैसा कि मैं बताया कि अगस्त का पौधा जिसका कि फूल बाजार में आपको 125-150 रुपये किलो बिकते हैं, तो ऐसे पौधे का 2 कतार 8 मीटर के अंतराल पर 2-2 कतार मतलब लगा दीजिए, 3-3 मीटर जो पेड़ों का कतार होगा, 2 पौधे का कतार, 2 कतारों के बीच

0: पेड़ के लिए वो 3 मीटर रखिए, 2 मीटर ने 3 मीटर, और जो खेती वाला कतार रहेगा वो 7 से 8 मीटर रखिए। ऐसे अगर करेंगे तो आपको प्रति हेक्टेयर निश्चित तौर पर आपको इसे 25 से लेकर के 30 हज़ार रुपये आपको आमदनी मतलब मिलेगी, जो कि आपको खास करके यहाँ के ऊपरी भाग से जो होने वाली आमदनी है उसके बराबर लगभग है।
1: तो और इससे छुट्टी और कोई ऐसी महत्वपूर्ण बातें कृषि वानिकी से?
0: कृषि वानिकी खास करके मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं कि पलामू की धरती खास करके ऊपरी भूमि का सवाल जहाँ तक है, मैं उसकी प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, चूँकि यहाँ का ढलान लिए हुए ऊपरी भूमि है। ऐसे भूमि में ढलान के खिलाफ, जो ढलान के खिलाफ अगर आप मतलब वनस्पतियों को समाहित करते हैं, खास करके शू बबूल या टेफ्रोसिया जैसे पौधों को लगाते हैं जो कि फर्टिलाइजर प्लांट कहा जाता है, तो ऐसे पौधे का अगर आप समाविष्ट करके और ढलान के खिलाफ 6 मीटर 7 मीटर अंतराल पर अगर मतलब कि ढलान के जो स्लोप है उसके अगेंस्ट में अगर इसको लगाते हैं सीरीज में
1: जी,
0: तो इसकी उर्वरा शक्ति आपकी भूमि की बनी रहेगी और उसमें जो उत्पादन लेते हैं उसका उत्पादन में भी 1.5 से 2 गुना मतलब कि आप प्राप्त करेंगे दूसरे तीसरे साल से। तो बहुत अच्छा तकनीक है, इससे न केवल मतलब कि भूमि की उर्वर शक्ति में सुधार होगा बल्कि जानवरों के लिए चारा का फसल, जैसे सुबबूल एक अच्छा चारा का फसल है वो प्राप्त होगा, और टेफ्रोसिया है तो उसे जलावन की लकड़ी मिलेगी प्रत्येक वर्ष, तो एक अच्छा मतलब की साधन होगा, और साथ साथ खेतों की उर्वरा शक्ति, उसके पत्ते बहुत आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं और उर्वरा शक्ति भूमि के बढ़ाने में काफ़ी योगदान करते हैं
1: जी। हम अगर यदि ये बात कर लें कि कृषि वानिकी हमारे किसान भाई लोग अगर यदि अपना रहे हैं तो कौन कौन सी फसल ले सकते हैं अंतर्वर्ती में, उसका
0: फसल का चुनाव तो किसान भाई निर्भर करेगा कि कैसा भूमि आप लेते हैं। ऊपरी भूमि के लिए खास करके मतलब कि पलामू के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो है यहाँ अगर बरसात, अधिकतर खेती बरसात होती है तो ऐसे में जो है तिल का फसल, जो खास करके जो भी खरीफ में तिल का फसल, और रबी में अगर ये जो स्लोप के अगेंस्ट में जैसा कि मतलब ढलान के खिलाफ अगर मतलब उस तरह का कतार बना लिए हैं तो आप अगर एक पानी की व्यवस्था रखते हैं तो ऐसे स्थिति में आप मतलब तीसी हो गया और चना हो गया मसूर हो गया के खेती कर सकते हैं, और अगर एक से अधिक मतलब कि पानी की व्यवस्था हो तो सरसों की खेती कर सकते हैं, और अगर एक भी बूंद पानी ना हो तो यहाँ वह कुसुम की खेती बहुत
1: सफलतापूर्वक सुंदर है। जी हाँ, आप थे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। आपने आज कृषि वानिकी से संबंधित विस्तृत जानकारियाँ हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार सर।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, कृषि वानिकी का महत्व इस पर जानकारी दे रहे थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो अपनी भूमि को ऐसे ही परती छोड़ देते हैं, और परती छोड़ने का मतलब है कि कई प्रकार से नुकसान उठाना। ऐसा बिल्कुल ना करें श्रोताओं, क्योंकि आज के समय में खेती की लागत बढ़ रही है, इसीलिए किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत का विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। यदि किसी किसान के पास कुछ भूमि खाली पड़ी है तो उसका सही प्रकार से उपयोग करके वे अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। खाली भूमि का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं तो चलिए आइए देखते हैं श्रोताओं। सबसे पहले तो हम बातें करेंगे कि बागवानी की, जिसमें वे फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, नींबू, पपीता, कटहल, आंवला, सहजन इत्यादि जो फलदार वृक्ष हैं, ये कम पानी में भी आसानी से उगाए जा सकते हैं, और यहाँ जो है ये बहुतायत मात्रा में होती है हमारे पलामू क्षेत्र में। तो इस प्रकार के फलदार वृक्ष लगा कर अपनी भूमि का उपयोग भी कर सकते हैं और इससे अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इसका जो लाभ है उन्हें कई वर्षों तक मिलता रहता है, उत्पादन भूमि की उत्पादकता बढ़ती है, और इससे बाज़ारों में जो फल मिलते हैं उसको बेचकर उन्हें अच्छी जो है कीमत मिल जाती है। खाली पड़े भूमि का वे चाहे तो मौसमी सब्जियां भी लगा सकते हैं, और क्योंकि सब्जियों का उत्पादन तो आज सालों भर किया जाता है और सब सालों भर सब्जियों का मांग

बाजार में बना रहता है। तो समय के अनुसार उसमें सब्जियों का उत्पादन करें, जैसे अभी हमारे किसान भाई भिंडी, लौका, करेला, टमाटर, बैंगन, खीरा इत्यादि जो है खेतों में लगाए हैं, और बहुत सारे किसान भाई अभी लगा भी रहे हैं। तो जो किसान भाई बिल्कुल खाली छोड़ते हैं खेतों, अपने खेतों को, उसमें भी सब्जी उत्पादन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सब्जी उत्पादन करना बहुत ज़्यादा मशक्क़त उन्हें नहीं करनी पड़ती है, बस छोटी छोटी बातों का उन्हें ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि जहाँ सब्जी का उत्पादन हो रहा हो वहाँ जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान रहे कि उसमें आप जैविक खाद का प्रयोग करें, जैसे कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, तो सब्जियों की जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है। और सबसे जो बड़ी बात है कि ताज़ी हरी सब्जियां आपको बाज़ारों में भी इसकी मांग रहती है और अपने घरों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ औषधीय एवं सुगंधित पौधे की भी खेती कर सकते हैं, जैसे कि आज लेमन ग्रास की जो बाज़ार में मांग है वो काफ़ी है, इसका भी खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत कम मेहनत इसमें करनी पड़ती है, कम मेहनत में भी ये बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो सकता है, जैसे अश्वगंधा, एलोवेरा, शतावरी, तुलसी इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सुगंधित पौधे हैं इसकी खेती भी कर सकते हैं हमारे किसान भाई, और इससे भी उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा कि वे फल वृक्ष लगा सकते हैं, तो जहाँ फल वृक्ष लगाते हैं हमारे किसान भाई, वहाँ मधुमक्खी पालन करना भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि मधुमक्खियों को वहाँ उन्हें रसपान करने के लिए फल मिल जाते हैं और उससे मध बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा शहद, मोम वगैरह भी उत्पादन होता है मधुमक्खी पालन से, तो ये सब बेच कर भी

उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे किसी कमरे में भी इसका शुरुआत की जा सकती है इस व्यवसाय की। तो हमारे किसान भाई सिर्फ थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी यदि रखते हैं या प्रशिक्षण लेते हैं तो इस व्यवसाय को करने में काफ़ी उन्हें मुनाफा मिल सकता है और इसकी जो बाज़ार में मांग है वो हमेशा बनी रहती है और इसके मुँह मांगे कीमत उन्हें मिल जाते हैं। तो कम जगह में, कम समय में और कम मेहनत में बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाला ये व्यवसाय साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई अपने रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार वे अपने खेतों में इन चीज़ों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसे अपने आय का स्रोत बना सकते हैं। तो चलिए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुनीता कर नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मशरूम उत्पादन में महिलाओं का योगदान एवं आय के स्रोत। साथ ही चर्चा करेंगे कुटीर उद्योग में रोजगार। भेंटवार्ता में सुनेंगे मृदा परीक्षण एवं इसका महत्व। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। तो चलिए बहनों आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से, और चर्चा है मशरूम उत्पादन में महिलाओं में सशक्तिकरण। तो आज हम एक ऐसे रोजगार के बारे में बात करेंगे बहनों जो कम लागत में शुरू होकर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकती है, और यह रोजगार है मशरूम उत्पादन। आज के समय में मशरूम की खेती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आय प्राप्ति का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। मशरूम केवल पौष्टिक खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि रोजगार और स्वरोजगार का एक काफ़ी महत्वपूर्ण साधन भी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कम जमीन, कम पूंजी और कम समय में बहुत ही अच्छी मुनाफा देने वाला ये व्यवसाय है। यही कारण है कि स्वयं सहायता समूह या ग्रामीण महिलाओं के बीच आज मशरूम उत्पादन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यदि हम बातें करें मशरूम की, तो मशरूम एक प्रकार का कवक यानी फफूंद है जिसे नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन और खनिज तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अत्यंत ही लाभकारी है। वैसे हमारे यहाँ तीन प्रकार के मशरूम की खेती की जाती है, बटन मशरूम, आयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम। और आयस्टर मशरूम की खेती करना सबसे आसान है और कम खर्च में इसके उत्पादन जो है आसानी से ली जा सकती है। हमारी बहनों के लिए मशरूम उत्पादन करना बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है, क्योंकि मशरूम उत्पादन के लिए बड़े खेत या भारी मशीन की आवश्यकता नहीं होती। महिलाएं अपने घर के जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी बड़ी आसानी से इसे किसी अपने कमरे में या झोपड़ी में या शेड में कहीं भी इसकी शुरुआत कर सकती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें समय अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मशरूम की फसल लगभग 25 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है,

बहुत ही जल्द जो है इसका नगद भुगतान महिलाओं को मिल जाता है, यानी जो आमदनी है वो इतने कम समय में उन्हें मिल जाती है। ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो घर में कई जो सामाजिक या रोज़मर्रा के जो भी काम हैं उसे निपटाते हुए वे आसानी से घर में रह कर भी इस व्यवसाय से जुड़ी रह सकती हैं, यानी घर में भी कर सकती हैं या अपने खेत है छोटे मोटे जगह में भी वो इसे बड़ी आसानी से कर सकती हैं। और अगर महिलाएं चाहें तो इसके लिए अगर पूंजी की उन्हें आवश्यकता होती है तो इसके लिए उन्हें बैंक से भी ऋण प्राप्त कर सकती हैं, या जो सामूहिक बचत होती है जैसे स्वयं सहायता समूह से अगर जुड़ती हैं तो उसमें जो बचत होती है उससे भी वे इस व्यवसाय को शुरू कर सकती है। और जब महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़ती हैं तो इसका दिनों दिन उन्हें मुनाफा मिलते जाता है, और जब मुनाफा मिलता है तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और आगे बढ़ने का, तो निश्चय ही वो इस काम को और आगे बढ़ा

0: फंसाए गांव घर के कार्य में लगे। चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मृदा संरक्षण की। जी हाँ, हम किस प्रकार अपनी मृदा का नमूना एकत्र करें, किस प्रकार तैयारी करके उसे जाँच के लिए भेजें, बहुत सारी बातें हैं मृदा पर। और इन सारी बातों पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, नमस्कार
1: जी। जोहार सभी झारखंड वासियों को मेरा जो है। और आज हम लोग मृदा परीक्षण और उसके महत्व के विषय में जो है आज चर्चा करने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। किसान भाइयों, मृदा का परीक्षण जो है कराना जो है बहुत आवश्यक है। इससे किसान जो है पहले जो है काफ़ी अनभिज्ञ थे, लेकिन जो है 2014-15 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहा और इस पे उन्होंने जो है इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया मृदा स्वास्थ्य के लिए जो है। तब से जो है 2014-15 से जो है मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जो है किसान को हम लोग ज़्यादा जागरूक कर पा रहे हैं, किसानों को ज़्यादा इसको बता रहे हैं और जो है इसके महत्व के बारे में जो है हमेशा हम लोग अपने प्रशिक्षण में जो है चर्चा करते हैं। और हमारे यहाँ मिट्टी जांच भी होता है और बिना मिट्टी जांच किए यदि हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है हमारे उपज पे उसका जो है बहुत
0: गहरा
1: असर पड़ता है और हमारे मृदा के स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपका मृदा का यदि नाइट्रोजन की आवश्यकता उसमें जो है जितनी चाहिए उतना आप नहीं दे रहे हैं तो हमारे उपज पर असर पड़ेगा। यदि आप ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना भी मिट्टी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो है जो जाँच के उपरांत जो रिजल्ट आता है

0: भी सही तरीके से होगी। यदि सैंपल जो है उसका नहीं सही तरीके से लिया जाएगा तो
1: तो
0: जांच
1: परिणाम
0: पे
1: गलत आएगा।
0: परिणाम गलत आ सकता है।
1: जी
0: इसलिए किसान भाइयों को इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि नमूना लेते कैसे हैं।
1: जी
0: सबसे पहले हम चर्चा करें कि नमूना कब लिया जाए। ऐसे तो नमूना आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उचित मौसम जो होता है वो आपका मार्च से लेकर के और जून तक
1: यानी
0: रहता
1: रबी
0: है।
1: कटाई के बाद।
0: हाँ, ताकि जो है खेत जो है खाली रहता है
1: जी
0: और जो है किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि फसल लगी रहेगी तो थोड़ा सा निकालने में दिक्कत आएगी। हालांकि उसका भी तरीका है निकालने का, फसल लगी है उसमें भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका समय होता है आपका मार्च से लेकर के और
1: जून तक।
0: जून तक जो है
1: जी
0: आप मिट्टी का नमूना जो है ले सकते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले जो है हम लोग निर्धारित करते हैं कि कम से कम जो है आप जो है 1 एकड़ से जो है नमूना लें। एक
1: अच्छा
0: एकड़ खेत है
1: जी।
0: तो वहाँ से नमूना आप ज़्यादा से लेने से जो है मिट्टी के नमूना सही ढंग से नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि जो है खेत की जो मिट्टी होती है वो बहुत माने एक बहुत जल्दी मतलब कि उसका जो है उसका जो पोषक तत्व है वो बदल जाता है।
1: अच्छा
0: जैसे कि आपका इस जमीन का यदि आपका पोषक तत्व तो कुछ है और थोड़ा सा भी यदि उसमें दूरी हुआ तो उसका पोषक तत्व तो जो है
1: अलग हो जाएगा।
0: अलग हो जाएगा।
1: जी
0: इसलिए जो है कम से कम जो है 1 एकड़ आप रखिए एरिया जो है, और उस 1 एकड़ एरिया में जहाँ से भी सैंपल लेना है कम से कम जो है 4 या 5 जगह से सैंपल हम लोग लेते हैं।
1: जी
0: जैसे कि जहाँ से भी सैंपल लेना है उसको निर्धारित करते हैं हम लोग कि माने कि जहाँ से मिट्टी हम ले रहे हैं वो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करे।
1: करता हूँ जी।
0: हाँ, और सैंपल वहाँ से नहीं लेना है जहाँ पर हम खाद वगैरह रखते हैं, जैसे कि
1: अच्छा अच्छा
0: गोबर की खाद वगैरह जो कहीं खेत में एक जगह जमा कर देते हैं
1: जी,
0: तो वहाँ से सैंपल नहीं लेना है।
1: चाहे हाल में रासायनिक खाद वगैरह का प्रयोग किया हो।
0: हाँ, तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर मतलब खाद रखा हुआ है क्योंकि तो वहाँ से भी सैंपल लेंगे तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा आ जाएगा या ज़्यादा आ जाएगा।
1: अच्छा
0: यहाँ पर पोषक तत्व तो अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन जो है इसलिए जो है वहाँ से सैंपल नहीं लेना है। आपको 4 से 5 जगह निर्धारित करना है खेत में। एक जैसे कि मान लीजिए कि आप वहाँ सैंपल ले सकते हैं, जैसे कि पानी जहाँ पे लगता हो
1: जी
0: वहाँ से ले सकते हैं, खेत में जहाँ
1: अच्छा
0: पानी नहीं लगता है वहाँ से ले सकते हैं,
1: जी
0: बीच से ले सकते हैं।
1: अच्छा
0: तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है मतलब कि चारों कोने से थोड़ा सा हट करके 4 जगह से और एक बीच से यदि आप सैंपल लिए हैं तो वो जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब लेने का तरीका कैसे होता है, जहाँ से सैंपल लेना है वहाँ से मिट्टी को साफ कर देते हैं
1: अच्छा
0: और उसके लिए जो है एक कुदाल एक खुरपी की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें जो है कुदाल से जो है भी आकार का शेप बनाते हैं।
1: अच्छा
0: जैसे कि एक किनारे जो है कट किए फिर दूसरे किनारे जो है हम कट किए भी के आकार का,
1: अच्छा
0: अंग्रेजी का
1: अच्छा
0: जो भी होता है
1: उस आकार का।
0: उस आकार का कट करके और 15 सेंटीमीटर गहरा करेंगे
1: अच्छा।
0: और उस मिट्टी को नहीं लेंगे, उस मिट्टी को निकाल देंगे हटा
1: अच्छा
0: देंगे,
1: जी
0: और उसके बाद जो कोर जो बना हुआ है 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ काटने के बाद जो है वहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर लेते हुए मिट्टी ऊपर
1: अच्छा
0: से नीचे की तरफ जो है खुरच
1: अच्छा
0: देंगे
1: अच्छा
0: दोनों तरफ से, और उस मिट्टी को हम लेंगे और इसी तरह से हम चारों 4 या 5 जगह जो भी निर्धारित आप
1: एकत्रित
0: किए हुए हैं
1: करेंगे।
0: उसे एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद जो है उसको जो है सूखी हुई मिट्टी रहेगी, चूंकि गर्मी का दिन है इसलिए सूखी रहेगी, तो उसको थोड़ा सा हम पीस लेंगे और पीस करके जो है और जो उसको जो है 4 भाग में बांट देंगे।
1: अच्छा।
0: घर पे ले ला करके उसको 4 भाग में बांट लेंगे। बांटने के बाद जो है 2 भाग को उसमें से हटा देंगे
1: अच्छा
0: और फिर उसको मिला देंगे
1: वाह।
0: और फिर जो है उसको 4 भाग में बांटेंगे और फिर 2 भाग को निकाल देंगे।
1: वाह।
0: तो इस तरह से जो है हम लोग जो है जैसे कि मान लेते हैं कि यदि आप 1 kg मिट्टी लिए हुए हैं तो 200 से 250 ग्राम मिट्टी आपको जो है सैंपल के रूप में तैयार होगी।
1: अंत में तैयार
0: हाँ, अंत
1: करेंगे।
0: में तैयार होगी। सरकार के द्वारा जो है अब जो सैंपल लिया जा रहा है, सरकार के कृषि विभाग से सैंपल लिया जाता है,
1: जी।
0: तो उसमें अब GPS लोकेशन से लिया जा रहा है,
1: अच्छा
0: उसमें जिसमें जो है अक्षांश और देशांतर जो है
1: देखते हुए
0: हाँ रहता है, और वहाँ से जो है कि हमारा जो मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं उस कहाँ उस जगह कौन सी है।
1: अच्छा।
0: वो अक्षर

0: हाँ सूर्यांतर से पता चल जाता है, मोबाइल से ही पता हो जाता है, या जीपीएस इसकी मशीन भी आती है उससे भी कर सकते हैं। तो उसमें किसान का नाम, उसका पता, पूरी तरह से मोबाइल नंबर और मिट्टी जो है सैंपल कहाँ से लिया है, मैंने अब ऊपरी जमीन से लिया गया है, मध्यम जमीन से लिया गया है कि नीचे की जमीन से लिया गया है, उसका उसमें जो है ब्यौरा देना होगा, और जो है किस तारीख को लिया गया है।
1: अच्छा,
0: फिर जो है आप उसमें और अच्छे से यदि जांच कराना चाहते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये खेत जो है हमारा सिंचित है क्या सिंचित है।
1: अच्छा अच्छा,
0: फिर जो है उर्वरक आप किस तरह का खेत में डालते हैं।
1: जी जी,
0: जितनी जानकारी आप देंगे उतना ही जांच करने वाले को लिए आसान रहेगा। जैसे कि डॉक्टर पूछता है ना कि भाई आपको बुखार आता है तो ठंडा देकर के बुखार आता है कि ऐसे बुखार आता है, उससे उसको आइडिया लगती है कि मैंने ये बुखार किस वजह से आ रहा है, जिस हिसाब से जो टेस्ट हुआ है ब्लड का और जो मरीज बता रहा है दोनों में मिलान करता है कि दोनों का एक तरह से है कि नहीं है, दोबारा फिर टेस्ट होता है। उसी तरह से जितनी जानकारी आप देंगे उतना ही अच्छा है। और कितनी गहराई से आप मिट्टी ले से, तो जनरली जो है 15 सेंटीमीटर तक की गहराई से मिट्टी ले जाता है, क्योंकि हमारा जो हल जो चलता है, जो भी कल्टीवेटर या जिस भी हल से खेती करते हैं, वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाता है। अब फसल भी हमारी जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक की गहराई में रहती है। बागवानी की फसलों को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी हमारी फसलें हैं वो जो है 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी होती है।
1: जी, अच्छा, सब्जी वाली जो फसलें होती है उसकी जड़ कहाँ तक जाती है?
0: हाँ, उसकी भी आप उसकी तो और कम जाती है, 10-15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जाता है। जो जैसे कि अब आपका अरहर है तो इस सब की जड़ें जो है थोड़ा गहरी जाती है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक चली जाती है, लेकिन और सब फसल जितनी है वो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर के अंदर जो है। तो ये सब सारी जानकारी जो है यदि आप देते हैं तो उसको जो है प्रयोगशाला में, कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विभाग में भी इसकी जांच होती है आत्मा के द्वारा जो है,
1: वहां दे सकते हैं।
0: और आपका 15 दिन में जो है इसका रिपोर्ट जो है आ जाता है।
1: अच्छा, मिट्टी परीक्षण कार्यशाला भी कहीं पर?
0: मिट्टी प्रयोगशाला है हमारे यहाँ, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में है, वो आत्मा में है।
1: मतलब जो भी है आपका आत्मा या फिर कृषि विज्ञान केंद्र या जिला कृषि कार्यालय, इन्हीं लोग के पास
0: है? इन्हीं लोगों के पास है, या यदि जैसे कि पलामू में हमारे तो इसी के पास है, लेकिन रांची जाते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपका ये वहाँ है, ये
1: कांके?
0: नहीं, कांके में नहीं है, ये है आपका पलांडू में।
1: पलांडू जी,
0: वहाँ जाँच करा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: जहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जहाँ पे भी होंगे वहाँ भी जांच होता है, हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी होता है।
1: तो जांच कराने के लिए हमारे किसान भाई स्वतंत्र हैं?
0: स्वतंत्र है, कहीं भी जांच करा सकते हैं। इस जिले के मिट्टी दूसरे जिले में भी दे सकते हैं, यदि इस जिले में व्यवस्था नहीं है दूसरे जिले में आप दे सकते हैं। इस तरह से करके जो है आप जो है उसका जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें जो 12 तरह के तत्वों की हम लोग जो है रिपोर्ट देते हैं, जिसमें जो है नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, फिर जो है पीएच हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, फिर जो है सल्फर हो गया, बोरान हो गया, इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है ये हो गया, इस तरह से करके हम लोग 12 तत्वों की जो है जाँच करते हैं। और उसमें जो है उस हिसाब से जो है फिर फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन होता है। फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन जो है आजकल जो है ऑनलाइन ही हो गया है, जैसे जैसे ही हम उसमें रिजल्ट डालते हैं कि इसमें नाइट्रोजन इस मिट्टी में इतना है, फास्फोरस इतना है, पोटास इतना है, तो उस हिसाब से जो है रिकमेंडेशन आ जाता है कि नाइट्रोजन चूंकि इतना है तो इसमें यूरिया का इतना देना है, फास्फोरस इतना है तो इसमें डीएपी इतनी देनी है। तो वो ऑटोमेटिक जो है ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि उसमें ले लेता है और जो है सॉयल हेल्थ कार्ड जो है वो इश्यू हो जाता है, निकल जाता है। अब उसको फिर हम लोग किसान के यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस हिसाब से किसान जो है फर्टिलाइजर जो है डालने का प्रयास करता है।
1: अच्छा, भूमि की जो परीक्षण हम करवाते हैं कब कब करवाने की जरूरत पड़ती है? जैसे एक बार हम इस वर्ष
0: तो तीन साल के बाद ही आपको अच्छा। फिर जरूरत पड़ेगी, इसके बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: और मृदा परीक्षण से छूटी हुई और कोई बात है?
0: अब मृदा परीक्षण से अब किसान जो है इसके इसमें बहुत अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जी अब जी। किसान इसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं। पहले इसमें ये संस्थान तक ही सीमित था, जैसे कि जो भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जहाँ है या कृषि केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है, वहीं तक सीमित रहता था। वैज्ञानिक लोग जो है अपने जो है जो रिसर्च होते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं, किसानों तक पहुंच कम थी।
1: लेकिन
0: जो है 2015 से जो है इसमें किसानों के तक पहुंच जो है हम लोग ज़्यादा किए हैं, और आज के समय में हमें लगता है कि मैंने काफ़ी किसानों का, हमको लगता है कि 40% से ज़्यादा किसानों की मिट्टी का परीक्षण जो है
1: हो चुका,
0: मैंने जिले में जो है हो चुका है।
1: जी हाँ ग्रामीण भाइयों, हम बातें कर रहे थे मृदा परीक्षण की, और संक्षिप्त में हम बातें चाहेंगे इसके महत्व के बारे में।
0: हाँ, इसका महत्व इसलिए है कि ये है कि आप जो है यदि आप जांच करा ले रहे हैं
1: जी,
0: तो जांच कराने के बाद जो है जो भी रिकमेंडेशन आ रहा है उससे जो है एक तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और दूसरा इसका उपयोग होगा कि इसमें जो है आपका उपज जो है अच्छी मिलेगी। उपज जो है यदि मिट्टी का में यदि नाइट्रोजन की आवश्यकता यदि मान लेते हैं कि 200 केजी यूरिया उसमें डालना है और हम 150 ही डाल रहे हैं तो हमारी उपज के ऊपर उसका असर आएगा। यदि मान लीजिए कि 200 केजी की जरूरत है यूरिया की, हम 300 केजी डाल रहे हैं तो ज़्यादा डाल रहे हैं,
1: लागत भी है।
0: तो उससे हमारी लागत भी बढ़ जा रही है, तो इससे लागत भी आपकी कम आएगी और जो है आपका मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है
1: बढ़ेगी
0: आपका, यदि लंबे समय तक किसान जो है अपनी मिट्टी से जो है उपज लेना चाहते हैं
1: तो मृदा परीक्षण
0: जो है बिल्कुल ही आवश्यक है। और बिना इसके जो है यदि आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो आपका जो है पैसा भी खर्च हो रहा है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी जो है वो खराब होता जा रहा है,
1: उत्पादन भी कम होगा
0: और आने वाले जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उसके लिए जो है हमारा स्वस्थ मिट्टी जो है वो नहीं रह पाएगा।
1: आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे ग्रामीण भाइयों को मृदा परीक्षण उसके महत्व के बारे में जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
0: धन्यवाद। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 262 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कोडरमा में निर्माणाधीन स्टेशन भवन का किया जायजा। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति की दी जानकारी। राज्य में मॉनसून की रफ्तार धीमी, 24 जून तक 58% कम बारिश। राजधानी रांची में अब तक औसत से 13% कम हुई वर्षा। और रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का कर रहा है विस्तार। रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जा रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस विशेष समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। आज झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। डॉक्टरों के साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजर्स और फाइनेंस मैनेजर्स की नियुक्ति से राज्य के अस्पतालों की कार्य प्रणाली को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
2: आज लगभग 262 लोग नियुक्त हुए हैं और इस बात को जरूर जहन में रखिएगा, जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है उसको हम ईमानदारी पूर्वक निभाने का हम प्रयास करें। मैं नहीं कहता किसी भी व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। सरकार आपसे काफी उम्मीद के साथ और जिम्मेवारी के साथ चलने को तैयार है।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज के बरहड़वा और गुड्डा के आदिवासी बहुल सुंदर पहाड़ी प्रखंड में मान्यता प्राप्त दलों के BLA-2 प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड में रह रहे विदेशी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार नहीं है और इन्यूमरेशन फॉर्म पर नागरिकता की गलत घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। के रवि कुमार ने बताया कि प्रारूप सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और रिफ्यूज टू साइन श्रेणी के मतदाता शामिल नहीं होंगे। वहीं ASDD सूची 5 अगस्त 2026 को प्रारूप प्रकाशन के दौरान दलों को उपलब्ध कराई जाएगी और सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित होगी।
3: संविधान आर्टिकल 326 में क्लियर दिया हुआ है, आपका भारत का नागरिक 18 उम्र हो चुका है, एक पोलिंग स्टेशन में रहेगा, मतलब उसका नाम रहेगी। बाकी कोई आदमी बाहर का आदमी यहाँ रहता है, मतलब विदेश का कोई आदमी रहता है, लीगली इनलीगली रहता है, उसका बारे में कोई मतलब नहीं, उनका नाम सूची में नहीं आया।
1: पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने आज एक दिवसीय दौरे के क्रम में कोडरमा में निर्माणाधीन स्टेशन भवन का जायजा लिया। स्पेशल सैलून बंधुआ स्टेशन से लेकर कोडरमा स्टेशन तक का GM ने इंस्पेक्शन किया। निरीक्षण के बाद GM ने रेलवे गेस्ट हाउस में रेल अधिकारियों के साथ बैठक भी की और यात्री सुविधाओं के बारे में कहा कि कोडरमा स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने धनबाद रेल मंडल में तरह के विकास कार्यों के बारे में बताया कि तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण प्रगति पर है। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण की भी स्वीकृति मिल गई है।
4: काफी एडवांस स्टेज में है स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण। कोडरमा से बरका की डबलिंग भी जो है अब स्वीकृत हो गई है, तो उसमें भी अब कार्य प्रारंभ होगा। इस तरह के बहुत सारे विकास कार्य हैं, सब एक साथ चल रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो उपलब्ध भी हो जाएंगे देश की सेवा के लिए, यहाँ के यात्रियों के लिए।
1: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड को विकास की एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि अजमेर जयपुर रांची के बीच प्रस्तावित अमृत भारत वर्जन 3.0 ट्रेन से राज्य की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित तथा सुविधाजनक यात्रा सुविधा मिलेगी। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में आज रामगढ़ परिसदन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभापति श्री राय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, सेवा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा रोजगार का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण अधिनियमों का उद्देश्य आम नागरिकों को सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बोकारो जिले में पुलिस तथा झारखंड अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने बोकारो स्टील सिटी स्थित कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट सह औचक निरीक्षण किया। कोचिंग संस्थानों के संचालकों को अग्नि सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने, अग्निशमन उपकरणों को कार्यशील अवस्था में रखने तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां बनाए रखने का निर्देश दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्नाटक से मजदूरी करने गए झारखंड के 18 मजदूरों को प्रशासन और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में मुक्त कराया गया। इन मजदूरों को पिछले कई महीनों से जबरन काम कराया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके खिलाफ बंधुआ मजदूरी और श्रम कानून के उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
1: कोई अनजान व्यक्ति के साथ ये चले गए कर्नाटक, तो वहाँ एक बंधुआ मजदूर के तरह इनको रखा गया। वहाँ ये 1-1.5 साल तक काम किए और वहाँ का जो ऑनर था वो इन लोग को पैसा वगैरह कुछ देता नहीं था, सिर्फ खाने पीने का देता था। तो फिर गाँव वाले ने मैंने प्रशासन से वहाँ फिर संपर्क किया, बाद में फिर रेस्क्यू किया।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबिरू थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने आज सारंडा के टाटीबा गांव के पास जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में संचालित 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों को नष्ट किया गया। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि फरार हुए शराब कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। मुहर्रम के मौके पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बोकारो जिले के सभी थानों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में माराफारी थाना क्षेत्र के जुलूस मार्गों का सत्यापन ड्रोन के माध्यम से करते हुए ऊंची ऊंची इमारतों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा बोकारो जिले के सभी मुहर्रम अखाड़ों, जुलूस मार्ग का सत्यापन सूक्ष्मता से करते हुए बिजली के तार, लटके हुए पेड़, रोड पर व्यवधान डालने वाले अवरोध का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। मौसम। रांची में अब तक लगभग 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा के मुकाबले 13% कम है। सबसे चिंताजनक स्थिति गढ़वा और चतरा जिले की बताई जा रही है, जहां सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है। रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, ताकि रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 50 से अधिक बच्चे अनुभवी प्रशिक्षकों और रेलवे खिलाड़ियों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 262 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कोडरमा में निर्माणाधीन स्टेशन भवन का लिया जायजा। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति की दी जानकारी। राज्य में मॉनसून की रफ्तार धीमी, 24 जून तक 58% कम बारिश। राजधानी रांची में अब तक औसत से 13% कम हुई बारिश। और रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का कर रहा है विस्तार। रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जा रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चतरा जिले में सामूहिक योग अभ्यास के जरिए स्वस्थ शरीर, शांत मन और सशक्त जीवन का संदेश दिया गया। मौके पर सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि
2: आदरणीय मोदी जी ने अपने प्रभाव आभा मंडल से पूरे विश्व को इस योग दिवस से अवगत कराया और आज पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर व्यक्ति को चाहिए अपने स्वास्थ्य, किसी भी देश के सफलता का पहला मूल मंत्र होता है स्वास्थ्य, वहाँ के नागरिक रहें, इसलिए हम योग करें स्वस्थ रहें। उन्होंने नारा दिया, योग करो स्वस्थ रहो देश सबल बनाओ।
1: बीते रविवार चतरा जिले के इकलौते परीक्षा केंद्र पर नीट की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। परीक्षा में कुल 407 परीक्षार्थी शामिल हुए। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित परीक्षा के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई थी। इधर विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के अध्यक्ष सरयू राय ने चतरा दौरे के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत के दौरान धार्मिक न्यास बोर्ड और मंदिर प्रबंधन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि
3: तो ये नीतिगत विषय है, इसके बारे में या तो कोर्ट से या सरकार से पहले आग्रह किया जाए कि ये ठीक नहीं है, हमारा मंदिर है, हम लोग एक आप नियम कायदा कानून बना दीजिए, उसके अनुसार जो जिनकी आस्था है वही लोग इस मंदिर को चलाएंगे। सरकार इतना ही करे कि एक समिति बनवा दे यहाँ आस्थावान लोगों की, अपने सरकार दे लेती है मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से, ये उचित नहीं है। धार्मिक न्यास बोर्ड सबका देख रेख करे, कहाँ उचित हो रहा है अनुचित हो रहा है इसको देखे, मगर प्रबंधन संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय आस्थावान लोगों की होनी चाहिए।
1: बोकारो जोन के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने चतरा में समीक्षा बैठक के दौरान अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और पुलिस जनता के बीच बेहतर समन्वय को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि
4: चतरा पहुंचने का जो पहला उद्देश्य था वो था कि अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर एक मीटिंग करना। हमारे पदाधिकारी बहुत अभी नए ज्वाइन किए हैं, तो अपने पदाधिकारियों से आईजी जोनल आईजी हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, तो यहाँ मैं जो अपने हमारे पदाधिकारी हैं जिले के सारे वरीय पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, तो कुछ बिंदुओं पर बात कर रहा हूँ। वह है, पहला तो है कि जो हमारे थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों का है वो व्यवहार अच्छा हो, यानी हमारे थाने में जो पब्लिक आती है उनके साथ उनका व्यवहार कैसा हो, जो थाने में रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं FIR दर्ज किया जाए, जो पदाधिकारी या पुलिसकर्मी हैं उनका टर्नआउट जो है वो काफ़ी अच्छा हो।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत चतरा जिले में 28, 29 और 30 जून को 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम और ट्रांजिट टीमों का गठन किया गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
0: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

आज मुहर्रमुल हराम के मौके पर आकाशवाणी डाल्टनगंज एक मखसूस प्रोग्राम लेकर आपसे रूबरू हैं और इस प्रोग्राम में आली इमाम की शान में कुछ मनकबत आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। मनकबत के अशार मुलाजा फरमाइए, चूँकि ये मुहर्रम एक ऐसा गम का और गम की याद मनाने वाली ये घड़ी है। हम सब आज आली इमाम की शान में उनकी याद में जो हैं हम लोग वक्त गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब आली इमाम की शान में जो भी पेश करें उसे आपके दिलों की गहराई के अंदर पहुँचे। कुछ अशार पेश कर रहा हूँ।

ये मतलब मुलादा फरमाइए, रुदाद करबला है और इसमें एक एक शेर में सारी कहानी नुमाया तौर पर जाहिर है, मतलब मुलादा फरमाइए।

आली इमाम का वो नगीना ए मोमिनों, क्या आया न रहम देख लो

0: मुहर्रम के अवसर पर मनकबत की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे कयूम रुमानी के स्वर में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग। आइए सुने कुछ फिल्मी रकमें।
1: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ।
0: फिल्म का नाम है खामोशी द म्यूजिकल।
1: लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कल्याणी कार्यक्रम के तहत भेंट वार्ता। विषय है दांतों की आम समस्या एवं देखभाल। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अब्दुल जफर और भेंट करता है श्री संजीव कुमार लाल।

0: नमस्कार मित्रों, हमारे दांतों का हमारे पाचन तंत्र से गहरा संबंध है। यदि हमारे दांत मजबूत रहेंगे, चमकीले रहेंगे और कोई भी जब हम खाना खाते हैं उसको हम अपने दांतों से चबा चबा कर खाते हैं तो खाने को पचने में कम समय लगता है और आप स्वस्थ रहेंगे। और आजकल देखा जाए तो हमारा खान पान काफ़ी बिगड़ गया है और ऐसे में दांतों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी दांतों की समस्या से ग्रसित हैं और बुजुर्ग साथी भी दांतों की बीमारियों से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम में कि दांतों की कौन कौन सी सामान्य बीमारियां होती हैं जिसका सही समय रहते हम पहचान कर लें और उसका इलाज हम शुरू कर दें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल्ला जफर। जफर साहब स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: जफर साहब, आजकल देखा जाए तो खान पान काफ़ी बिगड़ गया है, फास्ट फूड का सेवन काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसे में दांतों को ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है?
1: अगर हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा का सेवन कर रहे हैं, रेगुलर सेवन कर रहे हैं, तो दांतों में उसका इफ़ेक्ट हमारे जो मसूड़े हैं उस पर ज़्यादा कर रहा है। मसूड़े फूल जाते हैं या अच्छे से हम लोग सफाई नहीं कर पाते हैं तो मसूड़ों से खून आने लगते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे दांत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं और दांत हिलने लगते हैं, फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाता है।
0: तो दांतों में सामान्य बीमारियां कौन कौन सी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और उसका हम पहचान कैसे करें, लक्षण क्या है?
1: देखिए, हम लोग कुछ सामान्य बीमारियां आराम से हम लोग घर पे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो है सामान्य बीमारी में आता है वो हमारे गम ब्लीडिंग का आता है, मसूड़े से खून आना। मसूड़े से खून जब आता है तो अक्सर हम लोग जब ब्रश करते हैं तब समझ में आता है कि मसूड़े से खून आ रहा है, या अगर कभी कभी सीवियर केस में हम लोग जब सोए रहते हैं तो सुबह उठते हैं तो लगता है कि मुंह में बहुत ज़्यादा खून आ गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक हमने सुना होगा आम शब्दों में पायरिया हो गया है, तो पायरिया का स्टार्टिंग जो लक्षण है वो जिंजिवाइटिस कहलाता है। जिंजिवाइटिस में क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका पार्टिकल जो है कुछ रह जाता है हमारे मसूड़ों के बीच में, मसूड़ों दांत के बीच में, और उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं अच्छे से अगर ब्रश कर सकें, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएं और सफाई करवा लें, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो केस, जिंजिवाइटिस केस, आगे बढ़ के पीरियोडोंटाइटिस केस में चला जाता है, मतलब प्रॉपर पायरिया हो जाता है। उस केस में क्या होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों और दांतों के बीच में गंदगी इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि दांत हिलने लगते हैं, और फिर उस वो केस इरिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, जितने डेंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए प्रॉपर ओरल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर एक बार 6 महीने में या साल भर के बीच के अंदर आप अपने डेंटिस्ट, नज़दीकी डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। और एक और कारण है कि हम लोग ब्रश करते हैं तो बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि मसूड़े छिल जाते हैं जिसके वजह से ब्लड आ सकता है। और ब्लीडिंग गम के एक और कारण है कि हम कुछ दवाई रेगुलर ले रहे हैं, जैसे एनसेट्स हैं या एंटीकोगुलेंट, मतलब खून को जमने की दवा लेते हैं, या एंटीप्लेटलेट कुछ दवाई लेते हैं, तो वो भी एक कारण है। एक और मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है, उसको इंग्लिश में स्कर्वी बोला जाता है। तो अगर वो सब है, ये सब लक्षण रहेंगे तो हमारे ब्लीडिंग गम होने के चांसेस हैं। दूसरा सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है हमारे दांतों की वो है डेंटल सेंसिटिविटी की, कि हमारे दांत में बहुत झनझनाहट होता है, हम कुछ भी ठंडा लेते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके भी कुछ कुछ कारण हैं। सबसे मेन कारण ये है कि दांतों का लेयर बाई लेयर 4 लेयर होता है, तो सबसे ऊपरी जो लेयर होता है वो अगर वो शेड हो गया, अगर वो हट गया, तो उसके बीच का लेयर जो है वो डेंटिन कहलाता है। अगर डेंटिन निकल आया किसी कारण से तो उस केस में हमें ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा, और ठंडा पानी पिएंगे तो हमें ठंडापन का महसूस बहुत ज़्यादा होगा, हवा जब ज़्यादा ठंडी लगेगी तो भी, आइसक्रीम खाएंगे तो भी। तो वैसे केस में क्या होता है, सबसे ऊपरी लेयर का बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रात में दांत कड़कड़ाते हैं जिसके वजह से दांत जो है घिस जाते हैं, तो ऊपरी लेयर जो एनेमल होता है वो हटने के बाद उसके बीच का लेयर जो डेंटिन होता है वो आ जाता है, और डेंटिन जब एक्सपोज हो जाता है तो कुछ भी ठंडा पीजिएगा, ठंडा पानी हो, ठंडा आइसक्रीम हो, तो आपको ठंडा लगेगा।
2: उसके बाद एक कारण है कि आपके मसूड़े जो है नीचे जा रहे हैं, वो भी एक कारण है कि आप दतमन कर रहे हैं तो उसमें भी ज़ोर ज़ोर से आप दतमन कर रहे हैं। कुछ लोग खैनी खाते हैं तो उस केस में भी मसूड़े वहाँ पे जल जाते हैं खैनी खाते खाते, तो वो गम रिसेशन कहलाता है। तो वैसे केस में भी आपको ठंडा में ठंडा लगेगा। और कभी कभी दांत हमारे उम्र के हिसाब से घिसने लगते हैं तो वैसे केस में भी आपको ठंडा का महसूस होगा। कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आपको लगता है कि हमें ठंडापन महसूस हो रहा है तो फौरन आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, एक बार दिखलाएं। हर 6 महीने पे नहीं तो 1 साल के बीच में भीतर में आप ज़रूर जाएं।
0: जी, हमारे दांत स्वस्थ हैं, मोतियों जैसे चमकते रहें, तो कौन कौन सी सावधानियां हम अपने जीवन में रखें ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहें, चमकीले रहें। और देखिए, यदि आपके दांत स्वस्थ हैं, मोतियों जैसे चमकदार हैं, और जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी दांतें खूबसूरती बिखेरती हैं। तो हर कोई चाहता है कि हमारे दांत स्वस्थ हैं, चमकीले हों, और दांत से आपके व्यक्तित्व पर काफ़ी एक प्रभाव पड़ता है।
1: जी, आज के डेट में, आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है कॉस्मेटिक्स के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर, और चेहरे में सबसे जो मुख्य चीज़ जो आपको रोल अदा करती है वो है आपके दांत। अगर दांत आपके स्वस्थ हैं, अच्छे दिख रहे हैं, मतलब आपकी स्माइल अच्छी है, आपकी स्माइल अच्छी है मतलब आपका फेस अच्छा है, तो सबसे मुख्य कारण है आज की डेट में दांतों का सही होना, चमकीले होना। हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं या फिर चाय कॉफ़ी वगैरह जो लेते हैं, रेगुलर ले रहे हैं तो उससे हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं। तो वैसे केस में हमें थोड़ा सा धीरे धीरे कम लेना है और उसकी सफाई का ध्यान रखना है। और अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो वैसे केस में भी हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं। और कभी कभी कुछ प्रेगनेंसी केस में भी ऐसा होता है कि दांत पीले पड़ जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी कभी ज़्यादा आपके दांत डिसकलर हो गए हैं तो एक ब्लीचिंग एक ऑप्शन आता है। जैसे हम लोग चेहरे का ब्लीचिंग कराते हैं, इस तरह का दांत का एक ओकेजनली एक ब्लीच आप करा सकते हैं ताकि आपके दांत बिल्कुल चमकीले दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। और स्केलिंग पॉलिशिंग होती है, वो उससे भी आप सफाई मतलब सफाई रखेंगे तो आपके दांत चमकीले रहेंगे। और दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो उसका भी इलाज है, वो भी आज के जनरेशन में सारे अक्सर लोग, पहले कहा जाता था कि सिर्फ बच्चों लोग का दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसको ठीक कराया जाता, लेकिन अभी मिड जनरेशन जितने लोग हैं वो सब अपने दांत सीधे करवाना चाह रहे हैं ताकि आपके स्माइल अच्छी दिख सके, आपके दांत अच्छे जब सिमेट्रिकल वे में रहेंगे तो आपका स्माइल अच्छा दिखेगा, आपका फेस अच्छा दिखेगा। तो वो ट्रीटमेंट एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहलाता है। तो उसके थ्रू आप लोग अपने दांत, टेढ़े मेढ़े दांत थे उसको सीधे करके, जितने माल अलाइन दांत हैं उसको सीधे करके और दांतों का सफाई करवा के, स्केलिंग पॉलिशिंग करा के आप दांत चमकीले रख सकते हैं।
0: छोटे छोटे बच्चे हमारे
1: जी
0: टॉफ़ी का सेवन करते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और फास्ट फूड का सेवन करते हैं, और ऐसे में दांतों को नुकसान पहुँचाता है। तो माता पिताओं को क्या कहेंगे कि अपने बच्चे की दांतों का प्रॉपर ध्यान दें?
1: देखिए, आज के जनरेशन में माता पिता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में केमिकल के पदार्थ हम लोग सेवन ज़्यादा करने लगे हैं। लाइक अगर चॉकलेट भी आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला करके बनाया जाता है। चॉकलेट में शुगर ज़्यादा होता है, शुगर का इंटेक कुछ भी कीजिएगा तो वो उससे आपका बैक्टीरिया होने का चांसेस बढ़ जाता है, और बैक्टीरिया एक एसिड रिलीज करता है जिससे हमारे दांतों का डीमिनरलाइजेशन कराता है। ये सिंपल एक सीक्वेंस है जो आपको समझना चाहिए। तो वैसे केस में बच्चों के दांत और उनके ओरल कैविटी का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले बच्चों को चॉकलेट अगर आप खिला रहे हैं तो चॉकलेट खिलाने के बाद उनके दांत ज़रूर चेक कीजिएगा कहीं पे कुछ चिपका हुआ तो नहीं है। तो दांतों की सफाई करवाइए और दांतों के कम से कम सुबह और शाम में ब्रश करवाइए, और सोने से पहले ज़रूर उसके दांतों का चेक करके उन पे ध्यान दीजिए कि अगर वो बच्चा चॉकलेट खा के सो तो नहीं गया है, तो वो स्टक हो जाएगा जब दांत में तो वो धीरे धीरे कैविटी फॉर्म करेगा, कैविटी फॉर्म करेगा तो वो दांत सड़ जाएगा। और अगर दूध के दांत वक्त से पहले अगर टूट जाता है तो जो नीचे वाले जो

0: दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो अपने सही टाइम पे जब आएंगे तो उनको जहाँ उनको जगह लगेगा वहाँ पे आने लगेंगे। तो इसीलिए आज के जनरेशन में दांत बहुत टेढ़े मेढ़े दिखने लगे हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो आप उनके फ्यूचर का भी ध्यान रख रहे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला जफर साहब, दंत रोग विशेषज्ञ। बड़ी अच्छी आपने बातचीत की कि अपने दांतों का किस प्रकार ध्यान रखें, और ख़ास खास छोटे बच्चे जो चॉकलेट टॉफ़ी का लगातार सेवन करते हैं, यदि उनके माता पिता इस हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो बच्चे के दांत स्वस्थ रहेंगे, चमकीले रहेंगे और वो आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे।
2: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।
2: नमस्कार, थैंक यू।

स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के तहत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। विषय था दांतों की आम समस्या एवं देखभाल। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर अब्दुल सफर। भेंट करता थे श्री संजीव कुमार लाल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में माया फिल्म का ये गीत। आइए सुनिए कार्यक्रम।

ये गाना था फिल्म वारंट से और आवाज़ थी किशोर कुमार की। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से, आकाशवाणी के डाल्टन।

इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रही थी। गायक कलाकार थे हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर। इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:15 बजने को हैं। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में। प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा

0: फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

0: रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
2: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
3: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेज और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी। और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

0: अपने अभिनय का एक और रूप उन्होंने दिखाया शाहरुख और माधुरी के साथ। फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुझको हुई ना खबर।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से आज के फनकार का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

छोटी सी बात इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रही थी। आवाज़ें थी येसुदास और आशा भोसले की। आइए सुने अगला गीत फिल्म मधुमती से, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

माया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद को, फिल्म थी एक गांव की कहानी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से।

आशा भोसले के स्वर में अभी आप सुन रहे थे चांद और सूरज इस फिल्म का गीत। रजनीगंधा कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा आइए सुनते हैं।

इसी गीत के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार हिंदी और अंग्रेजी में। कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

0: में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकार उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।